जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: NEET UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPA के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPA ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPA ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
8: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
7: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
8: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
7: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
8: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
7: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
9: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नेक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

아시가나? 아시가나?

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: अनु जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद हैं, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी बातें करती हैं, और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में, और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको definitely मजा आएगा इस conversation में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत happy feel कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम situation में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे doctors होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो questions आप हमें भेजते हैं basically, और आज हमारे पास आप ही के questions हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जिसे पुराने जमाने
0: दाई, जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीज, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के लिए पा सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबॉडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें संभाल निकालनी है पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते
1: हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जिससे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच। आजकल के लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है ही, आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर। ठीक है, अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि absolutely. वो आपके बुरे के लिए,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: गवर्नमेंट इज रनिंग
0: की एब्सोल्युटली
1: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता
0: था,
1: बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3,000 to 4,000 rupees की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल,
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं। डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 months के इंटरवल पे, और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन। ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं, और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स, आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली, बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा ले प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
0: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है, आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
1: I would say कि प्लीज लगवाइए, ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए,
0: Absolutely.
1: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
1: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम, इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
0: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को, कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
1: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना, जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी, मंदिर ऊपर हुआ करते थे तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे,
0: बिल्कुल,
1: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं, दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग, एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स, की ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल्स। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट, पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
0: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं,
1: Exactly.
0: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं।
1: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज, आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमिन हो रहा है, यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं। अब पीरियड नहीं आए, एक दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है, विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
0: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चन के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है. पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है. पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है. अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा. किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें. निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली.
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना.
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त.
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा.

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रविवार की सुबह खूबसूरत सी और खुशी भी हाजिर हो गई है आपकी अपनी एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। श्रोताओं, संडे का बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, तारीख है आज 26 जुलाई। जी हाँ, 26 जुलाई है आज। और टाइम मैं आपको बता देती हूँ, 10:07 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ हो चुके हैं। और आज का मॉर्निंग मोटिवेशन कुछ यूँ है कि ज़िंदगी में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, और जो नहीं है उसके लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि हर नया सवेरा हमें एक नया मौका देता है मुस्कुराने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। दोस्तों, संडे सिर्फ आराम करने का दिन नहीं है बल्कि खुद को रिचार्ज करने का भी दिन है। अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताइए, अपने सपनों को फिर से याद कीजिए और आने वाले हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कीजिए। याद रखिए एवरीवन, मुस्कुराहट मुफ्त में होती है लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है, इसीलिए आज दिल खोल कर मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और हर पल को खास बनाइए। हैव अ वंडरफुल संडे एंड दोस्तों, कीप स्माइलिंग। देखिए, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है और मुस्कुराइएगा, खुशी आ चुकी है। आपका फेवरेट शो लेकर संडे मॉर्निंग मस्ती करेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आज हम करने वाले हैं और क्या कुछ स्पेशल है सब आपको पता लगेगा। आरजे खुशी के साथ बने रहिए आप। और हाँ, आप भी अपने मैसेज मुझे पहुँचा सकते हैं आज की मॉर्निंग। मोबाइल नंबर हमारा रहेगा 9837896896। बहुत सारे श्रोता तो हमारे इस समय आराम से उठे हैं, नहाए हैं, अभी ब्रेकफास्ट करने का सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करें, कुछ बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ कंप्लीट करके बैठे हैं, है ना। चलिए, अच्छी बात है, ब्रेकफास्ट जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा। और जो आज घूमने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि घूमने जाना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनों के साथ। एक संडे तो होता है जब हम अपनों के साथ होते हैं, बाकी डेज में तो बहुत बिजी होते हैं। तो चलिए, मैं सुनवाती हूँ आपको कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद करेंगे सिलसिला शुरू आपकी बातों का। आप भी मुझे अपनी थॉट, अपनी बातें खुशी तक पहुँचा सकते हैं।

0: के पीछे।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संडे मॉर्निंग में इस शो में। खुशी आपके साथ है और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने ऐसा ट्रैक सुना अरिजीत सिंह साथ में अफसाना खान जी की खूबसूरत सी आवाज सुबह सुबह तेरी बातें दिन बना दे। और सच में दोस्तों, जब सुबह सुबह हम किसी अपने की आवाज सुनते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है ना, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी अपने मैसेज हमें पहुंचाएगा, क्योंकि आप सभी तो हमारे अपने हैं ना। और दोस्तों, 26 जुलाई है आज। और आज दोस्तों, आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और देशभक्ति का दिन है। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये दिन उन वीर सैनिकों की उद्यम, बहादुरी और स्वच्छ बलिदान को नमन करने का दिन है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में दुर्गम पहाड़ों पर दुश्मनों को परास्त कर भारत का तिरंगा गर्व से लहराया। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कड़ाके की ठंड और बेहद कठिन परिस्थितियां भी हमारे जवानों के हौसले को नहीं डिगा सकी। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा की और हमें ये सिखाया कि देश सबसे पहले होता है। आज हम उन सभी अमर शहीदों को शत शत नमन करते हैं।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055077052।

देखिए दोस्तों, पतंग तो उड़ी उड़ी जाती है लेकिन खुशी भी इधर आ चुकी है। फिर मुरादाबाद 89.6 पर संडे मॉर्निंग मस्ती शो है। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज क्या स्पेशल है बताती हूँ आपको। दोस्तों, आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज जुलाई के चौथे रविवार को पेरेंट्स डे मनाया जाता है। जिंदगी के सबसे पहला स्कूल हमारा घर होता है और हमारे सबसे पहले टीचर्स हमारे मॉम डैड होते हैं। उन्होंने हमें चलना सिखाया, गिरकर उठना सिखाया, सही गलत की पहचान कराई और हर कदम पर हमारा सपोर्ट सिस्टम बनकर साथ दिया। हम बड़े हो जाते हैं एंड बिजी शेड्यूल में उलझ जाते हैं, लेकिन हमारे माता पिता की एक ही विश होती है, बस उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। उनके लिए महंगे गिफ्ट्स नहीं, बल्कि आपका थोड़ा सा टाइम, एक प्यारी सी स्माइल और दिल से बोला गया थैंक यू ही सबसे बड़ा तोहफा होता है। तो एवरीवन, आज पेरेंट्स डे पर एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए। आज अपने मॉम डैड के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताइए। अगर वे आपके पास नहीं है तो उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। बस इतना कह दीजिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू। और अब आज का हमारा एक प्यासा मैसेज भी है अपने पेरेंट्स के लिए। दोस्तों, माँ की दुआएं और पिता का विश्वास यही है हम हर बच्चे की सबसे बड़ी ताकत और सबसे खूबसूरत एहसास। हैप्पी पेरेंट्स डे टू ऑल द अमेजिंग मॉम डैड्स।

और दोस्तों आप भी अपने मैसेज हमें पहुंचा सकते हैं, मैंने आपसे कहा है। और यहाँ पर लगातार हमारे पास खूबसूरत मैसेज भी आ रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू आप सभी का। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाती हैं ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से। कहती हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आपकी आवाज़ सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। और इन्होंने बहुत ही प्यारी सी लाइनें लिखी हैं। ये कहती हैं कि मैम आज कारगिल विजय दिवस है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड सभी देशवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। कहती हैं कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है मैम, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हैप्पी पेरेंट्स डे सेम टू यू मैम। एंड नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती पति खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का। और ये अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रेडियो सुन रहे हैं इस वक्त एंड हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर पूजा जी का आया है और ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं विकास नगर से। कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आज संडे का दिन अपनी फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मैंने गर्मा गर्म बनाई है। अरे वाह, क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। पकौड़िया साथ में हरे धनिये वाली पुदीने वाली चटनी जो होती है ना, बड़ी टेस्टी लगती है ना? तो खाइए पिए, ऐश कीजिए, अपनों के साथ टाइम बिताइए दोस्तों। और एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत मैं यहाँ पर सुनवाती हूँ सभी पेरेंट्स के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए भी। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ से। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। और सच में दोस्तों देखिए, अगर हमारा चेहरा थोड़ा से भी पेरेंट्स को उदास लगता है ना, तो वो समझ जाते हैं कि बच्चे को कोई तो परेशानी है। अगर हम कितने भी मतलब कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके सामने ना बयां करें अपनी तकलीफें, लेकिन वो समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा परेशानी में तो है। और एक लाइक सबसे ज़्यादा जो अगर हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। और वो बहुत खुश होते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो दोस्तों मैं भी कहना चाहूँगी आपसे कि आप भी उनके लिए वक्त निकालिए, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस चाहिए तो आपका समय। सुनिएगा ये खूबसूरत संगीत, मैं बस वापस आती हूँ अभी।

0: 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी आपने सुना एक बेहद प्यारा और दिल को छू लेने वाला गीत, मुझे माफ करना, ओम साईं राम। सबसे पहले लूंगा अपने मम्मी दीदी डैडी का नाम। और सच ही तो है, हमारी जिंदगी की पहली पहचान, पहली सीख और पहला सहारा हमारे माता पिता ही होते हैं। उनकी दुआएं हर मुश्किल राह को आसान बना देती है। और आज के इस खूबसूरत रविवार पर अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो एक बार मुस्कुराकर उन्हें जरूर कहिएगा, आप मेरे लिए मेरी दुनिया हैं और सबसे बड़ी दौलत भी हैं। और दोस्तों, वक्त हुआ है अभी 10:48। जी हाँ एवरीवन। और दोस्तों, मैं आपको याद दिलाती हूँ, आज सुबह ठीक 11 बजे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी देशवासियों से जुड़ते हैं और समाज, शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण, युवाओं, महिलाओं, किसानों और प्रेरणादायक कहानियों जैसी कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी घड़ी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, 11 बजे मन की बात सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अभी सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत, बस उसके बाद आप सुनेंगे ठीक 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात।

0: in fashion, style.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: 10 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। करगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है, वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आगे

किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं।
इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और
और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपये से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं

देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत

बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद। Thank you.

हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग मस्ती शो आरजी खुशी के साथ, और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6. और वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 11:39. और दोस्तों, आज जन्मदिन है बॉलीवुड के उस अभिनेता का जिनकी मासूम मुस्कान और सादगी ने लाखों दिलों में एक खास जगह बनाई है. जी हाँ, बात कर रहे हैं जुगल हंसराज जी की. दोस्तों, जुगल हंसराज जी की फिल्मी सफर बहुत छोटी उम्र से शुरू हुआ था. साल 1983 में शेखर कपूर की चर्चित फिल्म मासूम में उन्हें राहुल का किरदार निभाया और अपनी मासूम अदाकारी से सभी का दिल जीत लिया. इसके बाद वे कर्मी और सल्तनत जैसी फिल्मों में भी बाल कलाकार के रूप में नजर आए एंड मुख्य अभिनेता के तौर पर उन्हें पहचान मिली पापा कहते हैं. इस फिल्म का सुपरहिट गीत घर से निकलते ही आज भी लोगों की यादों में बसा हुआ है. लेकिन साल 2000 में आई मोहब्बतें ने उन्हें हर घर में लोकप्रिय बना दिया. उनकी शांत सादगी भरी स्क्रीनिंग एंड दर्शकों को खूब पसंद आई. और दोस्तों, सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि जुगल हंसराज जी ने निर्देशन में भी कदम रखा. उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं. उनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे. तो दोस्तों, उन्हीं की फिल्म का एक शानदार गाना सुनते हैं. और हमारे श्रोताओं की भी लगातार मैसेज आ रहे हैं, तो बस हम आकर शामिल करेंगे. आप कहीं मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6. यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी.

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। देखिए, संडे का दिन होता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, मस्ती करने का, जो पेंडिंग काम होते हैं उनको कंप्लीट करने का। और दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, जुगल हंसराज जी पर फिल्माया गया। एंड दोस्तों, रोड साइड रोमियो का निर्देशन किया और बच्चों के लिए प्रेरणादायक किताबें भी लिखी। यानी उन्होंने खुद को सिर्फ एक अभिनेता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक निर्देशक और लेखक के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई। कहते हैं ना दोस्तों कि असली कलाकार वही होता है जो समय के साथ खुद को नए रंगों में ढाल ले, और जुगल हंसराज जी इसकी एक खूबसूरत मिसाल है। तो एफ एम मुरादाबाद की ओर से जुगल हंसराज जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और हम कामना करते हैं कि उनका जीवन हमेशा खुशियों, अच्छे स्वास्थ्य और नई सफलताओं से भरा रहे। और दोस्तों, उन्हीं की एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही है मोहब्बतें, जी हाँ, जिनसे उनको हर घर में पहचान मिली। एंड इस मूवी का ये टाइटल ट्रैक भी हम सुनने वाले हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना है। मोहब्बतें फिल्म का ट्रैक हम सुनने वाले हैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। और हमारे पास कुछ मैसेज भी यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दुर्गेश सैनी जी का, और ये कहते हैं, खुशी जी जय श्री राम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। ये अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं अलीशा जी मुरादाबाद से। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है उमेश कुमार प्रजापति जी का, खुशी मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर।

और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, तो उनको भी जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है, हाय खुशी मैम, आपकी वॉइस बहुत ही स्वीट है। और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं कौन, इन्होंने अपना नाम लिखा है सना। ओके हाँ श्योर सना, बिल्कुल ये ट्रैक हम आपको सुनवाएंगे। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बस गुड मॉर्निंग विश किया है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये लिखे है कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बंटी लाइन पर मुरादाबाद से। बहुत ही खूबसूरत लाइनी थी आपकी सर, थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है इंसान हुसैन जी का दौलत बाग मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग विश करते हैं ये सो भी, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, और ये मैसेज हमारे पास मुस्कान का आया, कहती है मैम हमारे मॉम तो नहीं है पर डैड हैं और हम बहुत मिस करते हैं उन्हें। मुस्कान ने ये अपना मैसेज पहुंचाया है। एग्जैक्टली दोस्तों, एंड बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके पास मम्मा पापा दोनों ही होते हैं, और हम लकी हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों अपने पेरेंट्स को हमेशा टाइम देना चाहिए। वो कुछ नहीं मांगते हैं हमसे, बस हमारा वक्त चाहिए होता है उन्हें। तो आप भी अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, आज संडे का दिन है, उनके साथ टाइम बिताइए, कहीं घूमने जाइए, कुछ स्पेशल बनाइए खाइए और अपने दिन को खूबसूरत बनाइए अपनों के साथ। और मुझे दीजिएगा अभी जाने की अनुमति, मैं मिलने वाली हूँ आपसे 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। आई होप आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब खुशी लेती है आपसे अनुमति।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और हम बात करने वाले हैं सेहत से लाभ कई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा अलग है। सच कहूँ तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे अपने सेहतिया भैया जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बताते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के शो में।
4: आर्जेरीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। आपने सारे प्यार और भरोसे के लिए आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी है कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। आर्जेरीना,
3: बात तो सच में बहुत ही बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है या मैं पूरी तरह गलत सोच रही हूँ?
4: अरे आर्जेरीना, नहीं नहीं, आप पूरी तरह भी गलत नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चे के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगाकर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, इसीलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
3: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के

0: बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है आर्जेरीना, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।
1: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इलाज होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
0: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहा जाता है। ये मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्म और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि हर जगह ये उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांव और दूर दराज इलाकों में। और हाँ, जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
1: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए, तो परिवार क्या करे?
0: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी और चीज की। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श और उसका प्यार, उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, जो उस माँ के गर्भ से मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा देता है।
1: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रही है कि ये आखिर संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
0: देखिए आर्जेरीना, यह कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ सीने से लगाकर सीधा रखती है, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसे कंगारू अपने छोटे बच्चों को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है। और इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ही जरूरी है।
1: ओहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे को गोद में ले लिया जाए वही काफी है?
0: नहीं आर्जेरीना, सिर्फ गोद में लेना ही काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगाकर रखा जाता है, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी इससे संतुष्टि रहती है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और ये एक तरीका बच्चे को वही माहौल देता है जैसे उसे गर्भ में मिलता था।
1: सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
0: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई है उनकी मृत्यु दरें कम हो रही हैं और उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है, वो ज्यादा स्वस्थ पाए गए हैं। यहाँ तक कि लंबे समय से भी ऐसे बच्चों के शरीर और मानसिक का विकास बेहतर देखा गया है।
1: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे के जिंदगी बचा सकता है, ये सोच कर ही मन भर आता है।
0: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल। और इस साल का यह संदेश भी है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है आर्जेरीना।
1: वाह, ये बात दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अच्छा सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
0: जी हाँ आर्जेरीना, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वही इसे भी जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्यकर्ताओं की सलाह जरूर ली जाए।
1: तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि सभी

0: होता है समझ सके।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, इसमें बच्चे को माँ की सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह रखा जाता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वह हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: आर्जेरीना, इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है। जो ताकत उसे माँ का दूध दे सकता है वो कोई और नहीं, और सबसे अच्छा पोषण होता है माँ का दूध, जो ताकत भी देता है, बीमारियों से भी बचाता है और उसके विकास में भी मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है, यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ को स्पर्श करके और माँ के दूध से बच्चे की सुरक्षा और पोषण और सुकून तीनों ही मिल जाते हैं।
0: अरे भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, पर जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए आर्जेरीना, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है, उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती हैं। ऐसे में बच्चा आम तौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोता है, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शरीर और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
1: जी हाँ आर्जेरीना, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध बेहतर तरीके से बनने लगता है, साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि माँ वो अपने बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। अच्छा सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है, हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
1: आर्जेरीना, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो यह है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदे दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ आर्जेरीना, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब भी पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चा उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: देखिए आर्जेरीना, बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो ना सिर्फ बच्चे को फायदा होता है बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और परिवार का माहौल सकारात्मकता से भरा होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखे। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चों को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सेहतिया भैया, हर चीज के साथ कुछ सावधानियाँ भी जरूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए तो उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें ताकि पूरी तरह बच्चे पर आप फोकस रहें। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए। आर्जेरीना,
0: ओहो, और इसे कितने देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई समय होता है?
1: कम से कम आर्जेरीना 1 घंटा तो इसे लगातार ही करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना ही बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में थोड़ा झिझक थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, यही तो हमारा मकसद है, जानकारियों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना ताकि हर परिवार अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके। और अगर कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त होगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही, लाभ कई। श्रोताओं, मिलेंगे फिर आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त RJ खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊँ पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद RJ खुशी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है, और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
2: वाह क्या बात कही आपने। लेकिन सच बताऊं, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
3: यही तो पोषण की असली तस्वीर है, और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है, और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
2: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
3: बिल्कुल सही कहा आपने RJ, पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
2: तो सबसे आसान भाषा में बताइए पोषण आखिर होता क्या है?
3: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन, जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
2: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
3: देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
2: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
3: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
2: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
3: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता, बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
2: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
3: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
2: और प्रोटीन?
3: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है। दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
2: बसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
3: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए, लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
2: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
3: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
2: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
3: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
2: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
3: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भावस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
2: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
3: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
2: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
3: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
2: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है, ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर।
2: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
3: जैसे कि आपने सुना होगा 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
2: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
3: जी बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती।
2: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
3: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
2: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
3: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्चे की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
2: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
3: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
2: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
3: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
2: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
3: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मानो कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
2: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
3: बिल्कुल, आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वे ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
2: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
3: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
2: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
3: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
2: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
3: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के 4th महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
2: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
3: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियाँ, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
2: क्या आरती ने सलाह मानी?
3: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
2: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा?
3: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
2: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
3: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
2: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
3: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
2: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
3: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
2: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
3: सीख तो

0: और साफ है। कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
1: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
0: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
1: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
0: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
1: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
1: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
1: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वस्थ को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
1: लाभ कई, धन्यवाद। सेहत सही तो लाभ कई, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: खांसी हो लगातार, मत करना इंतजार, समय पे जांच करवाओ, टीवी को दूर भगाओ, सेहत सही लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद कि हम पहले भी टीवी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इस विषय पर लौटे हैं। वजह है कि टीवी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। मैंने कई बार गांव में लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे टीवी तो पहले भी हुआ करती थी, अब कहाँ जाता है, अब कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीवी कैसे हो सकती है, और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं मौसम बदल रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या टीवी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीवी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीवी की जांच के बारे में, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है, और अगर सही समय पर जांच हो जाए तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमारे कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझा देती हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी आपका।
2: धन्यवाद RJ खुशी, और मेरे सभी श्रोताओं भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। RJ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीवी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है, जिसकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा। हमेशा थकान बनी रहती थी, घर के लोग पूछते थे क्या हुआ तो वे हंसकर कह देती अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था। शाम होते होते हल बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही, इसलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुए, बलगम की जांच हुई, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
1: सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीवी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिर टीवी है क्या?
2: देखिए खुशी, टीवी एक संक्रमण बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों में भी हो सकती है। इसीलिए टीवी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
1: लेकिन भाभी, लोग तो टीवी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्या हर बार टीवी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाते हैं?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीवी दो तरह की हो सकती है। एक लेटेस्ट टीवी, जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते, वह बीमारी नहीं फैलाता। दूसरी एक्टिव टीवी, जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं। फेफड़ों को एक्टिव टीवी दूसरों तक फैल सकती है।
1: तो ये फैलती कैसे है?
2: जब फेफड़ों की टीवी वाला व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या गाता है तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इससे सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों में।
1: गांव में लोग कहते हैं कि साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीवी फैल जाती है।
2: यह पूरी तरह गलतफहमी है। टीवी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले मिलने या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। इसीलिए मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है।
1: इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
2: अगर दो हफ्ते से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या गम में खून आए तो तुरंत टीबी की जाँच करानी चाहिए।
1: क्या भारत में आज भी टीवी बड़ी समस्या है?
2: भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से 2024 के बीच नए टीवी मामलों में लगभग 21% और टीवी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं। इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहतर जरूरी है।
1: क्या कुछ लोगों में टीवी का खतरा ज्यादा होता है?
2: जी हाँ, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोग, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच जरूरी है।
1: यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक, पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीवी है?
2: बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीवी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीवी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTIP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।
1: तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है?
2: सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच, बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी की जीवाणु मौजूद है या नहीं। यह जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती है और आज भी महत्वपूर्ण है।
1: CBN, AAT और TuneIn जैसे नाम भी होते हैं। कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होता है।
2: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है। इसकी खासियत यही है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में यह भी पता लगा सकते हैं कि कई बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रजिस्टेंट तो नहीं। यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जाँच सुविधाओं का का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके।
1: और एक्सरा की क्या भूमिका होती है? क्यों जब भी लोग लंबे समय तक खांसते हैं, डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरा लिख देते हैं?
2: बिल्कुल सही, छाती का एक्सरे टीबी की जांच में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में ऐसी बदलाव दिखाई देती है जैसे टीबी की ओर संकेत करते हैं। फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है तब और भी विशेष जांच की जरूरत होती है, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इसमें यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावित होगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
1: साथियों, बात बिल्कुल साफ है, अनुमान नहीं जांच जरूरी है। खांसी तो घरेलू नुस्खों में महीनों ना उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं। 2 हफ्तों की खांसी हो जाए, जांच बिना मत समय गवाएं। टीबी का इलाज है तैयार, समय पर जांच है सबसे बड़ा हथियार। टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूंगी, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करवाती है जो खुद अस्पताल पहुंचते हैं?
2: नहीं आरजे खुशी, अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच होती थी। इसमें हम पेसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुँचते हैं, गाँव बस्तियों दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके।
1: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही है।
2: बिल्कुल, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
1: टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्यों अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है?
2: यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो बाकी सदस्यों को भी जांच करवाना बेहतर जरूरी है। इससे संपर्क जांच या कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना अधिक होती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग की जांच जरूरी होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी हो तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान बचा सकता है।
1: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर है और शर्म। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं करवाते और दूसरों को भी बताते नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्ते पर असर पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह कोई पाप नहीं, यह कोई चरित्र की कमी नहीं, यह

0: एक सामान्य चिकित्सकीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी होते हैं। इसीलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा जरूरी है। समय पर जांच न करवाने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं?
0: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बातें हमेशा याद रखें। पहली, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो जांच जरूर करवाएं। दूसरी बात, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथा, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच करवाइए। और पांचवी, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
1: और मैं इनमें से एक छठी बात जोड़ना चाहूंगी। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसीलिए अगर आपका शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, समय पर जांच करवाइए, यही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब लेते हैं मिलकर सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: खांसी रहे 2 हफ्ते से पार, जांच करवाना है समझदार। टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करा के ही रुकेंगे।
1: श्रोताओं, मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं, और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं, और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
1: धन्यवाद आर्जेरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटी कोटी धन्यवाद। आर्जेरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन इतने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता, और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाए जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
1: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूँगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालात सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया, अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए, अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी, यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
0: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है, यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
1: देखिए आर्जेरीना, टीबी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं, वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं क्यों?
1: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर

0: आना होता है और वे फॉलो अप नहीं कर पाते। कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं, कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
1: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ जाए वहाँ की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज रखिए।
1: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
0: निक्षय वास्तव में टीवी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलो अप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलो अप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
1: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
0: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आर्जेरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीवी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि अधिकांश टीवी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है और ना ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखें, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छुपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
1: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
1: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
0: यही एक और बड़ी गलतफहमी है। इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
1: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
0: रीना, MDR TB यानी दवा प्रतिरोधी टीबी में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
1: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
0: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आजरीना। सरकार भी मानती है कि टीबी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकते हैं, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
1: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है, इसलिए सरकार निक्षय पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
1: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
0: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीबी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR TV भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
1: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीबी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और

0: योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा, और मैं हूँ आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जांच करवाएं तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से किसान भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो खासकर उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं ली है तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है।
3: तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
4: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4,00,000 करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए नई योजनाएं शुरू की है, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ये KCC की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा है। केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। हमारी सरकार ने खाद्य तेलों पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ाएगा।
2: तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है?
0: श्रोताओं, खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है, ये हम सभी जानते हैं। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, लेकिन सही तैयारी से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बीज हमेशा प्रमाणित खरीदें। फसल में रोग दिखाई दे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आजकल मौसम की जानकारी मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। और तो और, तकनीक का फायदा उठाइए और खेती को मजबूत बनाइए। दोस्तों, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश की उम्मीद जगाता है, वो पूरे देश की उम्मीद उगाता है। इसीलिए कहता हूँ, अब समय है हमारे श्रोताओं की बात सुनने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग जगहों से प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो रही है। जबकि हापुड़ से गीता देवी कहती हैं, महिलाएं भी अब खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि मुरादाबाद से किशन कहते हैं कि खेती तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार और समाज की ताकत भी है। आप हमें बता सकते हैं क्या आपके गाँव में खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? किसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है। और यही हौसला भारत की असली ताकत है, क्योंकि वो अन्नदाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। धरती माँ हर पसीने की कीमत जरूर चुकाती है। जब खेत हरे भरे होते हैं, तभी तो देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे आशीष और आप सुन रहे हैं खेती किसानी पर चर्चा। अपने खेतों से प्यार कीजिए, नई जानकारी अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। मिट्टी की खुशबू मेहनत की निशानी, देश की शान है अपनी किसानी।
2: और इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको अपने देश की खेती किसानी की परिपाटी और हरे भरे खेतों से जुड़े हुए इस गीत के साथ। नमस्कार।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज़ सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं। और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलाना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055077052।
2: आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
3: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
3: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
3: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
2: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
3: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
2: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
3: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
2: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
3: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
2: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
3: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान

0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है, इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 99 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए जीरो टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और आप सभी को पता है दोस्तों कि हम आपके लिए लेकर आते हैं एवरी डे आपका फेवरेट शो महिला मंच। और आज हम महिला मंच में बात करने वाले हैं, आज का हमारा शो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम अपने शो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार की जिन्होंने मेहनत, अनुशासन और अपनी अलग पहचान से करोड़ों लोगों के दिलों को जीता है। जी हाँ, आज हम बात स्टार अक्षय कुमार जी की। तो एवरीवन, आज हमारे साथ में परी यहाँ पर हैं और परी से भी जानते हैं कुछ अक्षय कुमार जी के बारे में। तो हाँ जी परी, आप क्या कहना चाहेंगी?
3: आज अक्षय कुमार के बारे में बात हो रही है और उन्हें खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी इतनी आसान नहीं थी। आइए जानते हैं उनकी पूरी जर्नी।
2: अब जर्नी की बात आपने की है तो अक्षय कुमार जी की जर्नी के बारे में तो हम भी जानते हैं, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अक्षय कुमार जी के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि एक्टर्स सभी को पसंद है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार जी का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। उनका जन्म 9 सितंबर 1976 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। बचपन से ही उन्हें खेल और मार्शल आर्ट का बहुत शौक था।
3: मार्शल आर्ट सीखने के लिए वे बैंकॉक भी गए थे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक होटल में शेफ और वेटर का काम भी किया था। यह संघर्ष उनकी जिंदगी को सबसे बड़ी सीख बना।
2: जी दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ना कि एक्टर की लाइफ कितनी इजी होती है ना, मतलब इतना पर्दे पे आना, एक्टिंग करना, यही काम होता है। लेकिन हर किसी की लाइफ में संघर्ष होता है दोस्तों। अब आपकी लाइफ में भी होगा, हर कोई अपनी लाइफ का हीरो है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार जी की। और अभी जैसे हमें बताया परी ने कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बने हैं अक्षय कुमार जी। भारत लौटने के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। यहीं से उनकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया।
3: मॉडलिंग के बाद उन्हें फिल्मों में मौका मिला। उनकी पहली फिल्म सौगंध 1991 में आई थी, लेकिन असली पहचान उनको खिलाड़ी 1992 से मिली। इसके बाद उन्हें खिलाड़ी कुमार कहा जाने लगा और वो आज भी खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाते हैं।
2: और दोस्तों, 1990 के दशक में उन्होंने कई एक्शन फिल्में की, लेकिन वो सिर्फ एक्शन हीरो बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने कॉमेडी और ड्रामा फिल्मों में भी हाथ आजमाया। हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया, वेलकम जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार कमिंग अभिनेता भी बना दिया। इसके बाद एयरलिफ्ट, रुस्तम, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन, केसरी और मिशन मंगल जैसी फिल्मों से उन्होंने सामाजिक और देशभक्ति से जुड़े विषयों पर भी काम किया।
3: साल 2001 में अक्षय कुमार ने अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से शादी की और आज उनके दो बच्चे हैं। वे अपनी फिटनेस और अनुशासित जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह जल्दी उठते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और समय का बहुत सम्मान करते हैं। यही आदतें उन्हें आज भी फिट और सफल बनाए हुए हैं।
2: हाँ, अभी बात की आपने परी कि अक्षय कुमार जी एवरी मॉर्निंग सुबह जल्दी उठते हैं, राइट? तो आप मुझे बताइए, मैं आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ, आप कितने बजे सुबह सोकर उठती हैं?
3: मैं तो सिचुएशन के हिसाब से उठती हूँ। अगर सुबह को जल्दी काम है तो जल्दी उठ गए, और अगर सैटरडे संडे है तो आराम से अपना समय लिया और फिर अपना काम शुरू किया।
2: ओके, कभी ऐसा हुआ है परी कि आपने सोचा कि आज मैं जल्दी उठूंगी और आज मैं सारे काम करूंगी, लेकिन उसी दिन आपको लेट नाइट नींद आई और आप लेट उठे?
3: मैं तो हर रोज सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के सब काम करूंगी, पर आलस इतना है कि बस नींद ही नींद आती है और कुछ नहीं। काम के नाम पे भी आलस आता है।
2: ओह माय गॉड, लेकिन यहाँ पर आज स्टूडियो में जब आप आई हो तो यहाँ पर तो आपके चेहरे पर कोई आलस नहीं झलक रहा है, यहाँ पर तो बहुत एनर्जी आपके अंदर नजर आ रही है।
3: यहाँ पे एनर्जी इसलिए है, सबसे पहली बात तो कि आप लोगों के संग मैं हूँ यहाँ, तो मुझे एनर्जी आ गई है आप लोगों से बात करके, मिल के। और एक तो हमारा टॉपिक भी इतना हॉट है कि हम अक्षय कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, ये सीट भी हॉट हो गई है और फिर तो मेरा माइंड भी खुल गया है और फिर मैं एनर्जेटिक भी हो गई हूँ।
2: अरे वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, अभी हमने बात की फिटनेस के बारे में और अब हम करने वाले, उन्हें कई बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। साल 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिल्म रुस्तम के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। अक्षय कुमार जी की कहानी हमें सिखाती है एवरीवन कि मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने का जज्बा इंसान को बहुत आगे ले जाता है।
3: बैंकॉक के होटलों में काम करने से लेके बॉलीवुड तक का सफर, सितारों में शामिल होने तक का उनका सफर हर किसी के लिए प्रेरणा है।
2: तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सपना है, आज से ही उस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कौन जाने अगली प्रेरणादायक कहानी आप ही हो। तो दोस्तों, अभी हमने बातें की हैं अक्षय कुमार जी के बारे में, और उनके गानों का जिक्र ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए अक्षय कुमार जी की फिल्म का एक शानदार गाना सुनते हैं। थोड़ा सा आपको भी थिरकाएंगे और थोड़ा हम भी थिरकेंगे। तो मुस्कुराइए, लौट कर आते हैं म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: तो दोस्तों देखिए, आपने अभी प्यारा सा ट्रैक सुना खिलाड़ियों की खिलाड़ी फ्रॉम द मूवी से, हमें सीधे साधे अक्षय। लेकिन हम इधर जो दो कुड़िया बैठे हैं ना स्टूडियो में, हम बिल्कुल भी सीधे साधे नहीं है, हम बहुत नटखट बहुत शरारती हैं और इधर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, पर इधर खुशी आप सभी के बीच फिर से कनेक्ट हो गई है आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों शो का नाम है महिला मंच और आज हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार जी के बारे में। तो दोस्तों अब अक्षय कुमार जी के बारे में हमने बात की है, अब बात करते हैं उनके कुछ सुपरहिट गानों के बारे में। दोस्तों उनका एक शानदार गाना है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली, टिप टिप बरसा पानी, जो कि मानसून आपको बताइए चल ही रहा है। और ये गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास इतनी आती है ना एवरीवन, मैं आपको काउंटिंग नहीं करा सकती, मतलब मैं काउंटिंग करना ही भूल जाऊंगी, इतनी बारी हमें रिक्वेस्ट आती है इस गाने की। और अगर एक गाने की और बात करें, गो गो गोविंदा, दिल ने ये कहा है दिल से, फ्रॉम द मूवी धड़कन, याद आया आपको वो राम का किरदार, कितनी खूबसूरती से अक्षय कुमार जी ने उस किरदार को निभाया और वो फिल्म तो सभी की धड़कनों में बसी हुई है क्योंकि गाने इतने प्यारे प्यारे हैं धड़कन मूवी के। शिल्पा शेट्टी जी, साथ में सुनील शेट्टी जी, अक्षय कुमार जी का किरदार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक अच्छे बेटे का किरदार उन्होंने निभाया, एक अच्छे पति का रोल उन्होंने प्ले किया, बहुत ही अच्छी फिल्म रही है अक्षय कुमार जी का वो मासूम सा चेहरा। और अब बात करते हैं हम तेरी ओर, कैटरीना कैफ जी के साथ ये प्यारी सी फिल्म की है, तो गाना कितना प्यारा है ना तेरी ओर। हम आपके और चले आते हैं, एवरी डे आपके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों लाल घगरा, ओए होए होए, सौदा खरा खरा, आपको पता है ये गुड न्यूज मूवी का ये प्यारा सा ट्रैक है। और तो दोस्तों अभी आपने सुना होगा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी रहा है बाला बाला एंड जैसे गाने आज भी लोगों की प्ले लिस्ट में शामिल है। और इन गानों पर आज भी पार्टियों और शादियों में लोग झूमते हैं, मैं तो बहुत झूमती हूँ, बाकी परे आप बताओ आप कैसे झूमती हो इन गानों पर, क्या अभी इन गानों को पसंद करती हो?
1: बिल्कुल, अक्षय कुमार के सभी गाने, उनकी फिल्में और उनकी एक्टिंग के तो हम सभी दीवाने हैं और उनकी फिल्में भी हम देखते हैं, उनके गानों पर भी झूमते हैं और वो इतनी कॉमेडी फिल्में बना करते हैं उसमें भी हम सबको कितनी हंसी आती है। उनके संग जो कलाकार होते हैं वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी सब बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, हंसाते हैं, एक से बढ़कर एक हैं। अक्षय कुमार के संग काम करना एक बहुत ही ट्रिकी टास्क है क्योंकि उनका हम छोटा सा एक अक्षय कुमार का डेली रूटीन जानेंगे, जिसमें क्या आपको पता है दोस्तों कि वो रोज सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और अपनी लाइफ को पूरे डिसिप्लिन में रखते हैं। सुबह उनके उठने का समय आप लोग गैस भी नहीं कर पाएंगे, 4:30 से 5 बजे तक वो उठते हैं। उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं, वो मुंबई की बीचों पर रनिंग करते हैं, वो अपने घर में संतुलन बनाए रखते हैं, खाना पीना भी वो बहुत संतुलित मात्रा में खाते हैं और वो शाम का सूरज जो जब ढल जाता है, सनसेट हमारा हो जाता है, उसके बाद वो ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं और वो 9:30 तक सो जाते हैं। और उनका मानना है कि अच्छी सेहत ही असली दौलत है। कितनी बढ़िया बात कही है, आजकल लोग पैसों पे मरते हैं और दौलत पे मरते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, पर अक्षय कुमार पहले ऐसे एक्टर हैं जो सेहत को दौलत मानते हैं। इससे बड़ी बात सीखने के लिए और हमारे पास क्या हो सकती है।
0: बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे आपने कहा परी कि सबसे जो कीमती होती है वो होती है हमारी सेहत,
1: सही बात,
0: क्योंकि हम अगर फिट रहेंगे तभी तो हम हर एक चीज का लुत्फ उठा पाएंगे ना। और जब हमारी सेहत ही नहीं अच्छी होगी तो हमारे पास कितना भी पैसा आए, कितना भी ऐशो आराम आए, हम उसका लुत्फ ही नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों आप भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखो, जो फिट है वो हिट है। आगे आप क्या कहना चाहेंगे परी?
1: मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते हैं, अगर आप स्वस्थ रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे तो अपने परिवार को भी समय दे पाएंगे और खुद का भी ध्यान रख।
0: बहुत अच्छा बोला है आपने। तो फिटनेस की बात अगर आई है तो हम से भी जान लेते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है ना, एक्टर के साथ साथ ना अपनी लाइफ के बारे में भी

0: थोड़ा सा इन्वॉल्व करना बनता है और मुझे भी अच्छा लगता है जब अपने बारे में हम थोड़ा सा गपशप करते हैं। देखो परी मुस्कुराने लगी है अभी से ही। तो परी मुझे आप बताओ, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं?
1: एक्सरसाइज तो जैसे कि वॉकिंग हो गई, हाँ। कि रात का खाना खाने के बाद हमने थोड़ा टहल लिए,
0: हाँ।
1: और फिर पेरेंट्स के संग थोड़ी देर क्या बोलते हैं बात टहलते टहलते बात करते करते आगे निकल गए, जिससे फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाता है और पापा मम्मी के साथ मेरी वॉक हो जाती है और उनकी वॉक हो जाती है। तो वॉकिंग क्या होता है कि उससे आपका जो नसें हैं वो ठीक रहती हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक रहता है, और क्या बोलते हैं सबसे बड़ी बात वॉकिंग करने से आप ये देख पाते हैं कि आपके आसपास हो क्या रहा है, आपको गॉसिप्स मिल जाती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और शायद लड़कियों में तो गॉसिप इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी गॉसिप इकट्ठी कर लेती हैं।
0: जब वो एक बार बोलना शुरू करती है ना एवरीवन, तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती है।
1: जैसे कि आप हम लोगों को ही देख लीजिए
0: जब तक कोई हमें कहना दे कि रुक जाइए, अब हम आरजी का काम ही होता है बोलने का। और दोस्तों तभी तो इस फील्ड में आए हैं ना।
1: वैसे तो खुशी मैम आपने बहुत पूछ लिया मेरे बारे में, अब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और ऑडियंस को ये बताएं कि आपका डेली रूटीन क्या है, आप सुबह कितने बजे उठती हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करती हैं, खाना पीना क्या खाती हैं, और आप अपने पूरे दिन में क्या क्या करती हैं।
0: ओके, तो आपने बात की मेरी फिटनेस के बारे में कि आप कैसे क्या आपका डेली रूटीन होता है, आप कितने बजे सोकर उठती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा जो टाइमिंग है सोकर उठने का, वो मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ, और 5 बजे उठकर पहले मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज के लिए, एक नया सवेरे के लिए, एक नए दिन के लिए, और इतनी उन्होंने अच्छी लाइफ हमें दी है, इतना अच्छा जीवन दिया है। एंड उसके बाद मैं करती हूँ वॉक पर जाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में।
2: गाइस ये सच नहीं बोल रही है
0: तो मैं सुबह सुबह वॉक करने जाती हूँ, टहलने जाती हूँ, और सुबह का वातावरण इतना खूबसूरत होता है, चारों तरफ एकदम शांत माहौल होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, और सुबह मैं देखती हूँ कि इतने सारे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सीनियर सिटीजन तक, सभी लोग अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। तो मुझे भी लगा कि मेरे को भी करना चाहिए, तो मैं सुबह सुबह ऐसे दिन की शुरुआत करती हूँ। और मैं बताना ही भूल गई कि मैं पहले गुनगुना पानी भी पीती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, गुनगुना पानी पीती हूँ, फिर वॉक करने जाती हूँ, उसके बाद आती हूँ, फिर आकर स्नान करती हूँ, फिर घर के सारे काम करके पूजा करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर आकर स्नान करती हूँ, फिर घर के सारे काम करके पूजा करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद तैयार होती हूँ, फिर ऑफिस चली आती हूँ, ऑफिस के बाद आकर जो अपने काम होते हैं वो रूटीन वो करते हैं, फिर शाम को जब मैं अपने घर जाती हूँ तो पहले मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ, पहले मैं आराम से सो जाती हूँ, फिर अपने काम को फिर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हमारा इतना बिजी होता है कि रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता और बॉडी आपको बताया कि थक जाती है। तो फिर मैं आराम करने के बाद शाम को फिर डिनर बनाती हूँ, कुछ हल्का लाइट वो खाती हूँ, फिर 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ, ये मेरा रूटीन है। तो दोस्तों देखिए, आपने मेरे बारे में परी ने पूछा तो मैंने बता दिया ये मेरा डेली रूटीन है। हाँ, थोड़ा फोन भी चलाती हूँ, ये तो बताना ही भूल गई थी दोस्तों। चलो अभी मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और लौट कर आते हैं फिर से करते हैं।

0: तो दोस्तों अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी धड़कन, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, और हमें सच में आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है दोस्तों, क्योंकि आप सबको एफएम मुरादाबाद से प्यार है, तो हमें आपसे प्यार है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो क्या गम है। और दोस्तों बात कर लेते हैं अक्षय कुमार जी की कुछ हिट फिल्मों के बारे में। अब बात करते हैं अक्षय कुमार जी की हिट फिल्मों के बारे में। दोस्तों उनकी फिल्म रही है मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया, वेलकम, सिंह इज किंग, राउडी राठौर, स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट, रुस्तम, ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा, पैडमैन, गोल्डन केसरी, मिशन मंगल, सूर्यवंशी और ओएमजी जैसी फिल्मों ने उन्हें हर वर्ग का पसंदीदा अभिनेता बना दिया।
1: दोस्तों अब हम जानते हैं अक्षय कुमार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 30 से अधिक वर्षों का फिल्मी करियर रहा है उनका, 150 से ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और कुछ फिल्मों में तो उन्होंने अपने स्टंट्स खुद किए हैं। फिल्मों से हटके अगर हम थोड़ी बात करें, रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी भी उन्होंने होस्ट किया है, और उससे थोड़ा और हटके बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है और सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है।
0: तो दोस्तों अब हम चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। अब हमारे जाने का भी वक्त हो गया है। दोस्तों संघर्ष से सफलता तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और अनुशासन उसे संभव बना देता है। कहते भी है ना कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अक्षय कुमार सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि समय की पाबंदी, फिटनेस और मेहनत की मिसाल है। इसी प्रेरणा के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको एक नए कार्यक्रम में नई बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए खुशखबरी,
4: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक
3: 120 से अधिक वर्षों का विश्वास, विकास की नई पहचान।
4: EKCC पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पाना हुआ और भी आसान। खेती की हर जरूरत का भरोसेमंद समाधान।
3: बीज, खाद, सिंचाई और फसल की तैयारी, हर कदम पर आपका अपना बैंक।
4: आसान प्रक्रिया, समय पर ऋण,

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आपकी दोस्त खुशी हाजिर है आपका फेवरेट शो लेकर बिंदास बोल। दोस्तों, वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:04 और अपने आप में संडे बहुत स्पेशल होता है दोस्तों। तो देखिए, बिंदास बोल में हम बातें करने वाले हैं इंटरेस्टिंग सी, मजेदार, जो आपके दोपहर को बनाएगा और भी ज्यादा अमेजिंग। अच्छा दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है हम सब फोन की बैटरी 10% होते ही ना चार्जर ढूंढने लगते हैं। जैसे ही फोन की बैटरी 10% बचती है ना, तो मतलब आप पूरे घर में ढूंढते हैं भाई चार्जर कहाँ है, चार्जर कहाँ है। हाँ, लेकिन खुद की एनर्जी बैटरी 1% पर भी बोलते हैं बस थोड़ा और काम कर लेते हैं। इसीलिए आज खुद को भी रिचार्ज करना मत भूलिएगा, एक मुस्कान के साथ मुस्कुराइएगा। और हाँ, इस ब्यूटीफुल शो में ना आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको हमें मैसेज करना होगा, कॉल तो नहीं लेकिन हाँ मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गन गुनाते रहिए। और एक ब्यूटीफुल ट्रैक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है आप सभी के लिए दर्शन रावल की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में, प्यारा गाना सुनिएगा। बस मैं आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन।
1: While making this song, I thought of every. मैंने सोचा पहली लाइन ऐसे लिखते हैं, how beautiful any word. So मैं उसको कैसे बताऊं कि मेरे हर गाने में कहीं ना कहीं वो है, हमेशा she's there.

हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपके एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना शान साथ में श्रेया घोषाल की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी वांटेड। दोस्तों, शो का नाम है बिंदास बोल, खुशी आपके साथ है। और ज़िंदगी की भागदौड़ में ना हम किसी ना किसी टेंशन से गुजरते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात, एक छोटा सा पल पूरा दिन खूबसूरत बना देता है ना। किसी के लिए गर्मा गर्म चाय पहले सब है, किसी के लिए बारिश की खूबसूरत बूंदे, और किसी के लिए माँ के हाथ के गर्मा गर्म पराठे, और किसी के लिए अपना फेवरेट गाना। सिर्फ पहली लाइन ही काफी नहीं होती है दोस्तों जिंदगी में ना। देखिए, परेशानी तो हर किसी की होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बताइएगा, वो सुबह की पहली चाय, या फिर मम्मी के हाथ के गर्मा गर्म खाना, या फिर अपने लिए कोई फेवरेट गाना। बताइए बताइए, फटाफट से मुझे व्हाट्सएप करो। नंबर है 9837896896। आप इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल अपने लिए आप निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप स्पेशल जो आपको खुशी देता हो? आप अपने संदेश हमें पहुंचाइएगा, मैं आप तक पहुंचाती हूँ एक बेहतरीन गाना।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: कोई मिल गया,
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और खुशी है आपके साथ। दोस्तों, देखिए, सावन का पावन महीना अब शुरू होने वाला है और देश भर में कांवड़ यात्रा की धूम। ऐसे में अगर आप भी यात्रा पर निकलने या फिर किसी ज़रूरी काम से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो एक अहम जानकारी आप सभी के लिए ये हमें अपडेट मिली है कि बांदा पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को देखते हुए एक नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। चित्रकूट जाने वाले कई मार्गों पर भारी वाहन की एंट्री पर रोक लगाई गई है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष डायवर्जन व्यवस्था की गई है। अगर आपकी यात्रा चित्रकूट या आसपास के इलाकों की ओर है तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक रूट की जानकारी ज़रूर लें ताकि आपका सफ़र सुरक्षित और सुगम रहे। एंड हमारी आपसे बस यही अपील है कि सुरक्षित यात्रा करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और शिव भक्तों का सम्मान करें। बाकी आपको पता ही है कि शो का नाम बिंदास बोले, हम बिंदास होकर बातें करते हैं यहाँ पर। और श्रोताओं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सिंपल सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है एंड क्या सवाल है आपका, हमारा क्या सवाल है आपसे मैं बता देती हूँ आपको। बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं लौट कर आती हूँ एक प्यारे से म्यूज़िकल ब्रेक की उस पार। आप कहीं मत जाइए, यूँ ही मुस्कुराइए और हाँ, अपने संदेश भी खुशी को पहुँचाइएगा। दोस्तों, जब आपका मूड खराब होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, जब आपका मूड खराब होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, चाय पीते हैं, किसी अपने से बात करते हैं या फिर अकेले थोड़ा समय बिताते हैं, बताइए बताइए। हम आपके मैसेजों का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी खूबसूरत गाने तो हैं यहाँ पर जो आपके मूड को बनाएंगे और भी ज़्यादा हैप्पी एंड टेंशन फ्री भी। तो चलिए सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे भी गपशप। आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइए।
1: पर अपन जा कितने रहे हैं?
2: रुक जा, तेनू लेके चल दूं।

0: जोकर।
1: तीस वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा।

क्या बात है दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से गाना सुना फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखती रहूं। उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गीत आपने सुना। और साथियों, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, और शो का नाम है बिंदास बोल, जहाँ पर आप बिंदास होकर बातें कर सकते हैं।

और दोस्तों, देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक अहम खबर, नवनियुक्त केंद्र श्री शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने आज आधिकारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें सौंपी दी गई है जिम्मेदारी। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए वे कृतज्ञ हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे इस दायित्व को पूरी विनम्रता, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। शिक्षा मंत्रालय देश के करोड़ों विद्यार्थियों, शिक्षकों और नई शिक्षा नीति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों का केंद्र है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल और सकारात्मकता बदलाव देखने को मिलेंगे। हमारी ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को नई जिम्मेदारियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं समय भी आपको बता देती हूँ, वक्त हुआ है अभी 3:50। और मैंने आपसे कहा था कि आप भी अपने संदेश मुझे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे अपने खूबसूरत संदेश, अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के पहुंचाइएगा अपने खूबसूरत संदेश, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी सुनवाती हूँ आपको कुछ चुनिंदा खूबसूरत से गीत जो मैंने आप सभी के लिए चुने हैं यहाँ पर। और अभी हम सुनवाने वाले हैं आपको बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी केसरी, जो अरिजीत सिंह साथ में आशीष कौर की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा ट्रैक है। तो सुनते हैं इस खूबसूरत गाने को, उसकी बात करते हैं आपसे बातचीत।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद से
2: संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

हे डियर, वेलकम बैक आप सभी का. आरजी खुशी अगेन वेलकम करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और एवरीवन, वक्त हुआ है 4:03. गुड इवनिंग, खुशी आपके साथ है. और मैंने आपसे बहुत सिंपल सा आपसे सवाल पूछा है एंड आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है. जब आपका मूड खराब होता है तो आप सबसे पहले क्या काम करते हैं? गाने सुनते हैं, चाय पीते हैं, किसी अपने से बात करते हैं या अकेले थोड़ा समय बिताते हैं? दोस्तों, हर इंसान का तनाव दूर करने का अपना अपना तरीका होता है. कोई अपने पसंदीदा गाने सुनता है तो कोई गर्मा गर्म चाय पीता है, कोई अपने सबसे करीबी इंसान से बात करता है तो कोई कुछ देर के लिए अकेला रहना पसंद करता है. तो आज हमने आपसे पूछा था कि जब आपका मूड खराब होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं. दोस्तों, इस जवाब का सवाल का जवाब देने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा और मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896. और हमारे पास बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आया है. ये मैसेज हमें प्रियांशी ने पहुंचाया है विकास नगर से. कहती है, मैम गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ डियर. और इन्होंने जो जवाब पहुंचाया है ना, बहुत ही प्यारा है. दोस्तों, सच ही तो है, हर इंसान अपने अंदाज में खुद को खुश करना जानता है. कोई अपने पसंदीदा गाने सुनता है तो कोई गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों में सुकून ढूंढ लेता है, तो कोई अपने सबसे खास इंसान से दो बातें करके ही हल्का महसूस करने लगता है. और दोस्तों, आप भी मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं जब आपका मूड थोड़ा सा खराब होता है. तो बताओ बताओ फटाफट से, मैं इंतजार कर रही हूँ. और मुझे इंतज़ार है आपके प्यारे संदेशों का. मुझे पता है आप मैसेज टाइप करने में बिजी हो गए हैं. चलिए, अच्छी बात है, अपना संदेश हमें पहुँचाएगा. मैं पहुँचाती हूँ आप तक कुछ प्यारे से गीत.

दोस्तों देखिए, भूलने वाले तो हम भी आपको नहीं है और मुझे पता था कि आप भी सबरी से मेरा इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का आरजे खुशी स्वागत कर रही है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और संडे की शाम अपने आप में स्पेशल होती है दोस्तों, जिसका पूरे वीक हमें इंतजार होता है कि चलिए फाइनली संडे सर आएगा और ढेर सारी मस्ती करेंगे, फैमिली के साथ फन करेंगे, घूमने जाएंगे, कुछ स्पेशल बनाएंगे, है ना। और जो पेंडिंग काम होते हैं उनको भी कम्प्लीट करना होता है, खुद को भी टाइम देना होता है। और कुछ श्रोताओं का संडे तो ऐसा जाता है कि पता नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो गई है, मतलब इतना काम में व्यस्त होते हैं। ऑफिस से भले ही छुट्टी मिल जाए लेकिन घर से छुट्टी नहीं मिलती है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। और देखिए मैं आपको अभी टाइम बता देती हूँ, यहाँ पर 4:16 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ। 26 जुलाई है आज और हमारे श्रोताओं के बड़े इंटरेस्टिंग से मैसेज आए हैं, खूबसूरत, थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रुचि काका, ये कहती हैं हेलो मैम गुड इवनिंग, और ये कहती हैं कि जब मेरा मूड ख़राब होता है ना तो मैं अपनी पसंद के गाने सुनती हूँ और सच मानी मैम संगीत में एक ऐसी जादुई ताकत होती है जो बिना कुछ कहे बिना दिल का बोझ हल्का कर देती है। तो जब भी मेरा मूड ख़राब होता है मैं अपने फेवरेट गाने सुनती हूँ और फिर उसके बाद मेरा जो मूड है ना वो ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाता है। अरे वाह क्या बात है स्वीट हार्ट। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, बड़ा ही ब्यूटीफुल, और ये मैसेज हमें पहुंचाती है हेलो मैम गुड इवनिंग खुशी दी कैसी हैं आप, निखत फातिमा का मैसेज आया है।

और ये कहती हैं दी, जिनकी वजह से मूड खराब हो और जब तक उनसे बात ना हो जाए हो तो खराब ही रहता है, सब बातें भुला के उनसे बात हो जाती है तो मूड खुद ही सही हो जाता है। अरे वाह, क्या बातें निखर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम, रवि कश्यप जी का मुरादाबाद से। ये कहते हैं कि हम ड्यूटी पर हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मैम। साथ में हमारे फ्रेंड्स भी हैं कुलदीप, और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका। इन्होंने एक शायरी भी लिखी है कि तू मिल गई है तो मुझे पर नाराज है खुदा, तू मिल गई है तो मुझ पे नाराज है खुदा, कहता है कि तू अब कुछ मांगता नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, ये प्यारी सी बातें हमारे श्रोताओं ने पहुंचाई हैं हम तक, एंड आप भी कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है 9837896896। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कराइए और एक बेहतरीन गाना आप सभी के लिए सुनते जाइए। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ, मुस्कुराते भी रहिएगा।

0: चाहिए। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल।

दोस्तों, संगीत का सफर जारी है, बातें भी जारी हैं और आपका साथ तो हमेशा की तरह हमारे लिए सबसे खास है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने दिलजीत दोसांझ की आवाज में प्यारा सा ट्रैक सुना। और दोस्तों, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा शो अभी कंटिन्यू रहने वाला है। आप भी शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने मैसेज हमें पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, अपने फ़ोन को उठाना है और हमें व्हाट्सएप करना है। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है। और अभी शाम में चाय पीने का इंतज़ार कर रहे हैं आप कि ओहो, कोई गर्मा गर्म एक कप चाय बना के ले आए। तो देखिए दोस्तों, इंतज़ार किसी का मत कीजिए, आप खुद चाय बनाइए और चाय का लुत्फ उठाइए प्यारे गानों के साथ। मैं अभी आती हूँ।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो एवरीवन, कैसे है आपकी संडे की शाम? हाँ जी, संडे की इवनिंग। उम्मीद है आपका पूरा दिन मुस्कुराहट हो और अपने लोगों के साथ बीत रहा होगा। एंड रविवार की शाम में अपने आप ही एक अलग सुकून देती है ना संडे की शाम। कुछ लोग परिवार के साथ चाय का आनंद ले रहे हैं, कुछ आने वाले हफ्ते की न्यू हफ्ते की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो कुछ बस अपने फेवरेट सॉन्ग के साथ इस खूबसूरत शाम को महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बातें ना अक्सर बहुत छोटी होती हैं। किसी अपने की मुस्कान, एक प्यारी सी बातचीत या फिर बिना किसी वजह के दिल से हंस लेना, इन्हीं छोटे छोटे पलों से हमारी यादें बनती हैं। सो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इस शाम को थोड़ा सा अपने लिए भी जी लीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा गुनगुनाइए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी आरजे खुशी, और आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, जहां बातें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिलों को जोड़ जाती है। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, क्योंकि अभी इस खूबसूरत शाम में बहुत सारे शानदार गाने और दिल से निकली बातें भी बाकी हैं। टाइम मैं बता देती हूँ, 4:50 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ। और सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक। भैया लड़कियाँ थोड़ा सा तैयार होकर सा सवर कर जब खुद को आईने के सामने देखती हैं ना, तो ऐसे ही शर्माती हैं।
1: कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं, तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना, छोरी का हर रंग तेरे

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

देखिए दोस्तों, जाना तो पड़ेगा बट जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। और लेकिन टिक टिक करके जो घड़ी की सुइयां है ना, वो हमारी ओर इशारा कर रही हैं। वक्त हुआ है अभी 4:58, 4:58 राइट टाइम स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है। और दोस्तों, अभी मुझे आपसे जाने की अनुमति लेनी है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, खुशियां हमेशा बड़ी वजह से नहीं मिलती, कभी कभी एक प्यारी सी मुस्कान, एक प्यारी सी बात और एक अच्छा सा गाना पूरे दिन को खूबसूरत बना देता है।

तो दोस्तों अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति. दिस इज आरजे खुशी साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिंदासपुर. हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड अ ब्यूटीफुल वीक. हैडिंग सी यू सून. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन. कीप स्माइलिंग. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

0: का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी, कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है और रोज देखते भी हैं हम लोग, लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत
0: राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रहे अवैध जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो का भार उठा करके ये पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का दूसरा पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar.
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
7: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
6: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
7: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
6: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
7: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
8: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
9: कोई मिल गया,
10: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नेट द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार। जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था, लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे। लेकिन अफसोस, कई घरों में सबसे पहले सवाल यही उठता है कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यही से शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए आप।
3: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में, अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
2: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
3: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है। शुरू करते हैं आज का।
2: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे, लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला ना सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
3: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
2: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
3: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर्स से मैं बोलूंगा।
2: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
3: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद मेरे, ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस हैं या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एक, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
2: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें।
3: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स खोल देता है, उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
3: हाँ बिल्कुल बना सकता है, अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं एकदम, आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है बिल्कुल होश और आवास में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपनी वसीयत अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं, अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट है उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए कोई भी अगर लगता है आपको कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
2: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए सर?
3: एज देखिए 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
2: अच्छा,
3: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
2: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
3: देखिए अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसमें, कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
2: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
3: देखिए साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
2: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
3: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद सामने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
2: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
3: हाँ वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी है, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल।
2: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
3: हाँ वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई अब मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत का वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
2: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति का क्या होगा?
3: देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती हैं जो उसके लीगल हायर्स हैं जो उसके रिलेटिव्स हैं जो चिल्ड्रंस हैं उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है और फिर वो जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट, वो आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो है पक्ष रखती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
2: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
3: देखिए उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है जिसको उसने ऐसे।
2: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का?

0: अधिकार होता है?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा। वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होकर घर चले आना है, बस बात खत्म। तो ना वो कभी संपत्ति के लिए, अपने हिस्से के लिए कभी कहती हैं अपने घर में, और ना ही कभी उनको मिलता भी होगा। तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं केसेस कि लोग अपनी बेटी को शादी के बाद भी अगर हिस्सा देते हों। लेकिन हाँ, वर्तमान में कानून के अनुसार बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है। हर लड़की का, हर बेटी का अपने परिवार में, अपने फादर की संपत्ति में उसका अधिकार है। उनके बाद में वो अधिकार के लिए, अपनी संपत्ति में हिस्से के लिए वो कोर्ट में सू कर सकती है, उसे राइट मिलता है।
0: क्या बात है, तो सुन लिया भाई लड़कियों। बहुतों को नहीं पता था सर, सच में एक्चुअल में नहीं पता होता है, क्योंकि उनको बचपन से यही कहा जाता है कि ये अभी तुम्हारा घर है, शादी के बाद तो वो हमारा अगला घर हो जाता है।
1: संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
0: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, उसका लीगल राइट।
0: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
1: देखिए, स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है। जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से, कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है, तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं।
0: क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं। आपने कितने नहीं जाना जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार। जो रीना के साथ कनेक्ट रही ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और आप सुन रही हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, और बहुत से लड़कियों को भैया यही लगता है कि अभी भी कि शादी के बाद मायके का जमीन जायदाद हमारी नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता है तो देखिए मायके का गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं क्योंकि मम्मी पापा के जायदाद में आपका भी पूरा अधिकार होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत करा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल करा सकता है, ये संबंधित व्यक्तिगत कानून है और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो जो भी अपनी संपत्ति को किसी एक व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है उसके लिए।
0: क्या मौखिक वसीयत मान्यता होती है?
1: समानता लिखित वसीयत अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक मानी जाती है, मौखिक वसीयत केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही मान्य हो सकती है। और विशेष परिस्थिति ये होती है जैसे कोई बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है, या बिल्कुल उसको लगता है कि वही इसकी लाइफ सर्वाइवल बहुत कम है या थोड़े टाइम की है, तो रजिस्ट्रार के सामने अगर वो कोई ओथ लेता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ओथ लेता है और वो कोई ऐसी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहे या लिखने पढ़ने में असक्षम हो, तो उस समय मौखिक जो वसीयत भी वो किसी रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के समक्ष डिक्लेयर करके कर सकते।
0: यदि वसीयत पर विवाद हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए संबंधित पक्ष न्यायालय में जाकर वसीयत की वैधता को चुनौती दे सकता है, और अदालत जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन लेगी, साक्ष्यों के आधार पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे, जो भी अदालत जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगा, जो डिसीजन होगा वो पक्षों को मानना पड़ेगा।
0: क्या नाबालिग बच्चों के नाम पर वसीयत किया जा सकती है?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभिभावक गार्जियन का उल्लेख करना उचित रहेगा, क्योंकि नाबालिग के लिए आप अगर कोई भी वसीयत कर रहे हैं तो उसको गार्जियन मतलब उसकी जो है मैच्योरिटी जो 18 ईयर्स ऑफ एज होने तक जो है गार्जियन अभिभावक जो है उसका उल्लेख करना मैंडेटरी होता है।
0: मतलब 18 प्लस होना ही चाहिए?
1: नहीं, वसीयत कर सकते हैं आप जो है नाबालिग के लिए भी, लेकिन एक गार्जियन जो है गार्जियन अभिभावक का उल्लेख करना उसमें उचित रहता है।
0: ओके,
1: उससे कोई भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती है फिर।
0: ओके, क्या वसीयत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को समर्पित की जा सकती है?
1: समर्पित, हाँ, आप कोई भी अगर कोई भी अपनी संपत्ति है, आप कानून के हिसाब से अनुसार व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति जो है वो किसी भी संस्था को आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है सर।
0: क्या परिवार के सभी सदस्यों को वसीयत की जानकारी देना जरूरी है?
1: देखिए वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई आपका फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए और नहीं बताना है तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो
0: मतलब बताना बहुत जरूरी है सर।
1: वो आपको लगता है कि अगर हाँ भी ठीक है मेरे बताने से ये चीजें जो है डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद कल को लड़ाई झगड़ा ना हो तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वसीयत विल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये संपत्ति को पार्टीशन करना है।
0: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई म्यूचुअली आप जो है रिकनसाइल करें, आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास करें, कोई सॉल्यूशन निकालें कि वो जो है जो भी जो है डिस्प्यूट है आपका रिजोल्व हो जाए, बातचीत से ही रिजोल्व हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी लीगल जो है अपना कंसल्टेंट या लीगल कोई जो है आपके लॉन्ग या एडवोकेट्स होंगे, आप उनको जो है उनसे राय लेके आप कानूनी मशवरा करके आप कोर्ट के थ्रू केस डाल के भी आप उसको रिजॉल्व करा सकते हैं।
0: एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, आम जनता के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सलाह क्या होगी?
1: देखिए यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के संबंध में समय रहते स्पष्ट और विधि सम्मत वसीयत बनवाएं, जो भी एज पर लॉ है, और आवश्यक दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से या कोई भी जो आपके लीगल कंसल्टेंटों से आप कानूनी सलाह अवश्य लें, और बस मैं यही बोलूंगा कि जो है प्रॉब्लम्स जो है हमें पता नहीं होती कब आने वाली है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको भी अपनी वसीयत जरूर बना के रखनी चाहिए और ये सेफ है प्योरली। और जो आप अपने रहते कभी भी वसीयत आप उसको चेंज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं।
0: क्या बात, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
1: देखिए संदेश मेरा अपने लिसनर्स से यही है कि आपका रेडियो कम्युनिटी रेडियो जो इतनी अच्छी अच्छी लीगल टॉक्स में इतनी अवेयरनेस की बातें लेके आते हैं उसको सुनते रहें और अपने लीगल जो आपके जो राइट्स हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है हमेशा जो है जागरूक रहें और जो है बस यूं ही जो है हमारे शो को आप प्यार देते रहें।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि श्रोताओं का प्यार हमारे लिए बहुत
1: जरूरी
0: है,
1: उन्हीं के लिए हम लोग हर वीक वेट करते हैं कि उनसे बात होगी, वो हम जो है उनके लीगल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे यहाँ।
0: बिल्कुल, उम्मीद करते सर अगली बार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे,
1: नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि वसीयत आखिर क्या होती है, इसे बनाना क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास भी कोई संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस या कोई कीमती चीज है, उनके लिए वसीयत बनाना एक समझदारी भरा कदम। समय रहते बनाई गई एक सही वसीयत परिवार में होने वाले कई विवादों, गलतफहमियों और कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको यह समझ आया होगा कि वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को लेके जाता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सी गलत फहमियाँ होती है लोगों के अंदर जो आज क्लियर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक ऐसे टॉपिक के साथ, आप सभी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए अपनी जिंदगी में और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहिए। बाय।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मेरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की जो नौ चंदी मेले की जान है, नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था,
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत समृद्ध विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नानखटाई। नानखटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीजें, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नानखटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोली एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नानखटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती है दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: करो।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजरीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। टॉक शो में कनेक्ट हो गए हैं जी ढेर सारी बातें करने के लिए। और कहते हैं अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें जुड़ी होती है उम्मीदें, सपने और पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन सोचिए अगर वही सपना किसी बिल्डर की लापरवाही, देरी या धोखाधड़ी की वजह से अधूरा रह दे तो क्या करें? क्या कानून आपके साथ खड़ा है और एक खरीदार के तौर पर आपके अधिकार आखिर है? तो श्रोताओं, आज का प्रोग्राम हमारा बेहद खास होने वाला है क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं या फिर किसी रियल एस्टेट विवाद का सामना कर रहे हैं, तो आज की यह बातचीत आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी, जो हमें सारे सवालों के आंसर देने के लिए आज मौजूद हो गए हैं। भाई काफी टाइम के बाद आज कनेक्ट हुए हैं सर, तो और जानेंगे इनसे रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों में खरीदारी के कानूनी अधिकार क्या है, किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए और अगर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो न्याय पाने का सही रास्ता क्या होगा। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी आपके बारे में, हमारे श्रोताओं को बताइए जो कि बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, और बहुत बहुत वेलकम है जी।
2: देखिए मैं पहले तो आपके कम्युनिटी रेडियो 89.6 FM का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी सीरीज लीगल टॉक जो आपने चलाई है, खास तौर पे जो हम अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी बातें जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कुछ लीगल मुद्दे होते हैं जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है।
3: बिल्कुल।
2: तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक तो अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं भी अपने श्रोताओं से बड़ा वेट करता हूँ इस प्रोग्राम का कि जल्दी से जल्दी ये वीक आए और आपका लीगल टॉक्स प्रोग्राम में मैं उनको नई जानकारी दे पाऊँ जिससे वो उनको कोई परेशानी है तो जो सजेशन है या जो भी अवेयरनेस है हमारी वो जागरूक बने और जो है अपने अधिकारों को जाने,
3: मतलब वही है जो उनके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाता
2: जी,
3: है।
2: जी बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और डेली दिनचर्या में जो भी उनका कानूनी अधिकार है उसको वो जान सके।
3: तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रियल एस्टेट में खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है।
2: देखिये खरीदार को समय पर, अधिकतर लोगों का एक सपना होता है कि मैं कोई भी अगर कोई दुकान ले रहा हूँ कहीं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कहीं किसी मार्केट में, या मैं सपनों का घर बना, तो सबसे बड़ी चीज एक ये होती है कि उसे समय पर उसका कब्जा मिले, पोजीशन मिले उसका। फिर गुणवत्ता, उसका निर्माण कैसा हो रहा है, क्या क्वालिटी यूज हो रही है उसमें, जो पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए उसको कि भाई अगर हम कोई शॉप या मकान ले रहे हैं तो अधिकतर केसेस में हमारे पास आते हैं कि बिल्डर जो है उन्होंने कोई शॉप या कोई मकान बुक कराया है, बाद में वो बिल्डर की तरफ से डिमांड नोटिस निकाल दिया जाता है कि उसमें वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे कभी कंज्यूमर का हैरेसमेंट करता है, कभी कोई और चार्जेस का नोटिस दे देते हैं, और एग्रीमेंट के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं और कानून के अनुसार जो भी राहत पाने का जो भी अधिकार है, जो भी रेमेडी है आपकी, वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए।
3: ये तो सही बात है, क्लियर होगा तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा।
2: बिल्कुल।
3: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्लैट या दुकान खरीदने से पहले क्या क्या जांच करनी चाहिए?
2: देखिए आजकल बहुत प्रलोभन वाले विज्ञापन अखबारों में और सोशल मीडिया साइट्स पे आ रहे हैं कि आप अपने घर बनाए, 1 लाख रुपए में प्लॉट ले, 2 लाख में प्लॉट ले, आप रोड पे भी निकल जाएंगे तो कई ऐसे होर्डिंग्स आपको दिख जाएंगे कि आपके सपनों का घर मात्र 50,000 में, 40,000 में। तो ये सब एक लुभावने विज्ञापन देके जो बिल्डर्स होते हैं वो एक आकर्षक स्कीम्स दिखा के जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अगर आप कोई भी फ्लैट या दुकान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिल्डर की साख देखिए, उसकी गुडविल क्या है मार्केट में, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने सिर्फ होर्डिंग लगा दिया, उसकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं उसका कोई भी जो है लैंड नहीं है, उसके पास लैंड बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ एक विज्ञापन के माध्यम से उसने आपसे पैसे ले लिए और बिल्डर का कुछ अता पता नहीं और वो भाग जाए कहीं। दूसरा, ये प्रोजेक्ट की स्वीकृतियां देखें, जो प्रोजेक्ट वो दिखा रहा है अपने विज्ञापन में दिखा रहा है, अपनी जो भी स्कीम आपका उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव आपको बताने आया है, उसका अप्रूवल जो प्राधिकरण है या जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो भी बॉडी है गवर्नमेंट की, वहां से उसका अप्रूवल है या नहीं है, उसके पास भूमि की स्थिति क्या है, उसका लैंड बैंक कितना है, जिस प्रोजेक्ट को वो दिखा रहा है वो वास्तव में उसका मालिक है या नहीं है, एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं, जो उसने शर्तें लिखी हुई हैं उसको ध्यान से पढ़िए, भुगतान की क्या योजना है, क्या स्कीम्स हैं, उसको डीपली आपको चेक करना चाहिए। और रेरा सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, आपको पता होगा कि रेरा जो एक संस्था है वो बिल्डर्स को, उसको बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन उसमें जरूरी है। रेरा एक कंज्यूमर्स के हित में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है संस्था बना दी गई है, उसमें पंजीकरण की जांच अवश्य करें कि बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है।
3: पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी है आज के समय में।
2: देखिए, वो बिल्डर्स के लिए है कि जो ऑथराइज बिल्डर है वो अगर कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है मार्केट में और कंज्यूमर से वो पैसा उठा रहा है तो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और रेरा बिना कैसे किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं करता, वो सारे नॉर्म्स चेक करता है, वो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट ला रहा है उसके पास उतना लैंड बैंक है नहीं है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें पैरामीटर्स पूरी करने के बाद ही कोई बिल्डर वो रेरा में रजिस्ट्रेशन करा पाता।
3: क्या बात है, क्या केवल ब्रोशर देखकर संपत्ति खरीदना सही है?
2: नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट देख के या होर्डिंग देख के या अखबारों में विज्ञापन देख के आप ब्रोशर देख के कोई संपत्ति खरीद लें, ब्रोशर केवल प्रसार सामग्री हो सकती है। हमेशा लिखित एग्रीमेंट और आधिकारिक दस्तावेजों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसको डीपली चेक करें उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
3: तो सर, अगर बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता तो खरीदार क्या करे?
2: देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत आम हम लोग देखते हैं, कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि बिल्डर ने हमसे पैसा ले लिया है और या फिर हमने बैंक से फाइनेंस कराया है, बिल्डर जो है उसका पैसा भी उसको पहुंच चुका है और वो हमें पोजीशन नहीं दे रहा है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, बिल्डर को पहले आप एक रिटन में लिखित नोटिस दें कि जो एज पर टर्म्स कंडीशन तय हुई है उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीजन है, और समाधान ना मिलने पर आप उपलब्ध आप कानूनी जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म से चाहे रेरा में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, कोई लोकल प्राधिकरण या लोकल बॉडी और डेवलपमेंट अथॉरिटी की वहां आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे गवर्नमेंट ने आज की डेट में रेमेडीज दी हुई है कंज्यूमर को कि वहां आप कंप्लेंट कर सकते।
3: क्या बिल्डर बिना बताए कीमत बढ़ा सकता है?
2: देखिए, समानता तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर आपके जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अगर कोई क्लॉज ऐसा मेंशन कर रखा है उसने पहले, यहाँ पे दोनों पक्षों की रजामंदी है, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है तो वो बढ़ा भी सकता है, लेकिन कीमत और भुगतान की शर्तें एग्रीमेंट के अनुसार ही तय होती हैं जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ होता है।
3: तो श्रोताओं, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। एक बहुत ही शानदार गाना आ रहा है आप सभी के साथ। देखिए, बातों के साथ गाने के तड़के ना लगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता है।

0: वंस अगेन एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए श्रोताओं, और आप सभी को पता है कि काम की बातें होती हैं, तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या हर प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है?
1: देखिए, कई जो परियोजना होती है उसके लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया गया है हमें सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ श्रेणियों में जो है कानून की तरफ से छूट भी दी गई है। तो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो रेरा मैंडेटरी है, लेकिन कुछ श्रेणियां ऐसी हैं कि वहाँ पे कुछ जो है क्लॉज ऐसे हैं कि उसमें कानून में छूट भी दी गई है।
0: सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, रेरा क्या है और खरीदार को इसे क्या फायदा मिलता है?
1: देखिए, रेरा एक रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के हित की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है, और इससे एक खरीदारों को ये फायदा मिलता है कि रेरा में कोई बिल्डर जब रजिस्टर्ड होता है तो उसको अपने काफी सारे जो पेपर्स हैं, जो अपना लैंड बैंक है, जो प्रोजेक्ट वो ला रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है, वो सारी रेरा में जो रेरा संस्था जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है उसको अवगत कराना पड़ता है, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खरीदार है उसके लिए भी एक जो है फायदे की चीज है, और उसको भी एक बचाने का उद्देश्य है रेरा का, कि अगर कोई भी बिल्डर ऐसी सिर्फ ब्राउचर्स पे या एडवर्टाइजमेंट के बल पे अगर वो जो मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रहा है तो बिना रेरा के एक तो वो रोक लग जाती है उसपे, और सबसे बड़ी चीज अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे पैरामीटर उसके पूरे हैं, कागज पूरे करके वो अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है, तो खरीदारों का उस पर भरोसा भी बढ़ जाता है।
0: अगर बिल्डर रिफंड देने से मना कर दे तो क्या करें?
1: देखिए, अगर आपके एग्रीमेंट में कोई टर्म्स कंडीशन ऐसे तय हुई है कि बिल्डर्स पैर एग्रीमेंट में कि कुछ रिफंड अगर आपका क्लेम निकलता है तो आप उससे डिमांड करते हैं, तो पहले तो लिखित मांगे, दस्तावेज को सुरक्षित रखें, और अगर उसके बाद भी बिल्डर उसको टाल रहा है या कुछ लिंगर ऑन करने की कोशिश करता है तो जो भी आपकी कानूनी विधिक जो भी आपके पास राइट्स हैं, आपके से अच्छी एडवोकेट से राय लेके उसको आप जो है सू भी कर सकते हैं, कोर्ट में कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, रेरा में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको रिलीफ मिल सकता है।
0: श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिलहाल हम अगले एक कॉमन क्वेश्चन है सर, क्या कब्जा लेने के बाद भी शिकायत की जा सकती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपसे बिल्डर ने जो है आपको परमिशन दे दिया है और उसने जो एज पर एग्रीमेंट अगर उसने कोई भी क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज किया या उसने जो चीज आपको रिटर्न में दी है उस चीज को आपको प्रोवाइड नहीं कराया है या क्वालिटी लो क्वालिटी यूज करी है तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं।
0: सो एक बहुत ही ये मुझे लगता है कि कॉमन क्वेश्चन है, बिल्डर द्वारा वादा की गई सुविधाएं ना मिलने पर क्या अधिकार है?
1: देखिए, बिल्डर ने अगर कोई भी

0: ये हर चीज आपको रिटर्न में ही अगर होगी तो अदालत उसी पे संज्ञान लेती
1: है। बिल्कुल श्रोताओं, तो देखिए मौखिक यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कितना भी ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो मान्यता नहीं
0: बिल्कुल की अगर जाएगी। कोई आपको ट्रस्ट कहे कि मैं आपको जो है पैसे डबल कर दूंगा या आपको इतने लाख में इतना प्लॉट दे दूंगा या बिल्डर की तरफ से कोई आपको प्रलोभन या कोई स्कीम दी जाती है, तो कोई भी अगर उसका प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रपोजल है तो आप सारी चीज उससे रिटर्न में मांगिए, उसकी जांच पड़ताल करिए। क्योंकि कोर्ट में भी अगर आप जाते हैं कल को आपको पोजीशन की दिक्कत आती है या रिफंड की दिक्कत आती है तो कोर्ट कोई भी चीज को वर्बली नहीं मानती है,
1: मतलब रिटर्न में होना चाहिए,
0: हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए। बिल्कुल,
1: क्या बात है। खरीदार को कौन कौन से दस्तावेज संभाल कर रखना चाहिए?
0: देखिए जब हम कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है, हम अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट को हमें संभाल के रखना चाहिए। कोई बुकिंग कराते हैं हम किसी प्रोजेक्ट की तो बुकिंग फॉर्म होना चाहिए, जो भी हमें पेमेंट्स हमने करी है उस पेमेंट का स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर हमने कैश दिया तो कैश की रिसिप्ट होनी चाहिए, अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट दिया तो बैंक के स्टेटमेंट्स होने चाहिए, बिल्डर की तरफ से कोई हमें रिसिप्ट अगर इशू करी गई है तो वो होनी चाहिए, कोई ईमेल हमने करी है या बिल्डर की तरफ से कोई ईमेल हमारे पास आई है वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। और आजकल जो है कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो व्हाट्सएप चैट्स भी जो है वो अप्रूव्ड हैं, तो आप व्हाट्सएप चैट्स भी आप ऐसे जो उसको रिकॉर्ड ले सकते हैं। कोई किसी समाचार पत्र में या किसी न्यूज़पेपर में कोई अगर उसने प्रपोजल या एडवर्टीजमेंट दिया उसको भी कॉपी आप संभाल के रख सकते हैं कि क्या प्रपोजल दिया था उसने। तो ये सारे जो पेपर्स हैं जितनी भी रिकॉर्ड्स की चीजें आपको संभाल के रखना।
1: अच्छा सर, ऐसा भी है कि कोई बोल रहा हो अगर हम उसकी वीडियो बना के अगर दिखाए तो वो क्या मान्यता की जाएगी?
0: नहीं बिल्कुल, अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव बिल्डर तरफ से या बिल्डर खुद उस चीज को कमिट करके अगर आपको कह रहा है और आपने उसका कोई रिटर्न में या आपने वीडियो कोई साक्ष्य उसका बनाया और कल को वो उससे ब्रीच करता है या हटता है तो आप उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
1: तो मान्यता है?
0: बिल्कुल है मान्यता।
1: क्या बिल्डर मनमानी मेंटेनेंस की फीस ले सकता है?
0: देखिए ऐसा है, बिल्डर अगर अपनी परियोजना को जो है पूरा कर लेता है और जो है उसमें आपके एक एग्रीमेंट में सब चीजें निश्चित उसमें लिखी हुई है कि अगर उसमें कुछ चार्जेस उसने लिखे हुए हैं कि भाई मेंटेनेंस फीस मैं आपसे इतनी लूंगा, तो अगर एग्रीमेंट में आपका ऐसा कुछ है मेंटेनेंस का डिक्लेयर है उसमें तो वो ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता।
1: अगर बिल्डर परियोजना अधूरी छोड़ दे तो खरीदार क्या करे?
0: देखिए कई बिल्डर्स क्या करते हैं, हमने देखा है कई केसेस भी आते हैं कि बिल्डर ने क्या करा, अपना प्रोजेक्ट ही बीच में खत्म कर दिया, रिजॉल्व कर दिया या अधूरा बना के छोड़ दिया, तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं जितने भी सभी खरीदार हैं वो मिलकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जो भी आपके पास उपलब्ध कानूनी उपाय हैं वो आप ले सकते हैं। आप मिलकर एक कमेटी बना के सोसाइटी की तरफ से एक आप अपना क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी बना के आप केस फाइल कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं कि आप उसको बिल्डर के अगेंस्ट में कोर्ट में सू कर सकते हैं।
1: बहुत से सर डरते हैं कि क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं शिकायत या नहीं कर सकते हैं।
0: नहीं देखिए, आपका पैसा आपको रिकवर करना है तो ये तो आपका राइट है कि आपको पैसा चाहिए तो आपको तो केस तो या सू तो करना ही पड़ेगा, रिफंड कैसे मिलेगा नहीं तो आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है?
0: देखिए अगर आप परिस्थिति के अनुसार हाँ है, यदि मामला उपभोक्ता विवाद के दायरे में आता है तो हाँ बिल्कुल आप जो है कंज्यूमर फोरम में आप केस बिल्कुल फाइल कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं बस रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद और हमारी जो ये बातचीत है वो जारी रहेगी। बस आपने रेडियो की ट्यूनिंग हमें कनेक्ट करके रखना है, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: वेलकम बैक है श्रोताओं, एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं, जहां पर ढेर सारी बातें हो रही है। देखिए, घर लेने से रिलेटेड अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो बेझिझक बिंदास होकर आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में, प्रॉपर्टी में आप पैसे लगा रहे हैं और इन फ्यूचर आपको वो नहीं मिल पा रहा है, आप सोच रहे कि हमें, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो रहा है, तो हम क्या करें, इसके लिए आप शिकायत कर सकते
1: हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है तो आप कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राइट बनता है ये।
0: तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर बिल्डर दिवालिया हो जाए तो खरीदार का क्या होगा?
1: देखिए, बिल्डर का अगर दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आईबीसी बोलते हैं जिसको, है ना, आईबीसी की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट कोड, ठीक है। इसके तहत एक कानून है 2016 के अंतर्गत संरक्षित कर सकते हैं और आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक आपको केस बताता हूँ, जो पाशानाथ डेवलपर्स लिमिटेड है, पाशानाथ ग्रुप है, उसके अंगेंस्ट में ये इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्ट कोड की ये जो प्रोसेस है वो चल रही है और काफी जो क्लाइंट्स हैं उसका क्लेम भी उन्होंने फाइल किया हुआ है। तो पाशानाथ के विरुद्ध ये कार्रवाई इस समय नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में, लॉ ट्रिब्यूनल में ये जो है नई दिल्ली में चल रही है। अभी हाल ही का केस बता रहा हूँ मैं आपको।
0: ओके, तो मतलब सर क्लियर हो गया अब उनका?
1: नहीं, अभी केस चल रहा है वो, उसमें कई क्रेडिटर्स ने उस पर क्लेम किया हुआ है और अभी वो पूरा जो मैटर है वो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास में है, तो वहीं से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो आए हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके तहत जो है, जो भी जितना क्रेडिटर्स का क्लेम है वो सब चेक कर रहे हैं, उसके बाद उस पर डिसाइड होगा क्या।
0: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या केवल नगद भुगतान करना सुरक्षित है?
1: देखिए, नगद भुगतान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बैंकिंग माध्यम से ही भुगतान करें और हर भुगतान की आपको रसीद जरूर लेनी चाहिए या चेक से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, डीडी दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर आरटीजीएस है, नेफ्ट है, उसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं।
0: तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, मान लीजिए कि हमने घर ले लिया है और जो हमारा जो बिल्डर है उसके पास अगर कोई भी हमारी दिक्कत आती है, तो इन फ्यूचर कभी कभी ऐसा होता है कि वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, बिल्डर तो हर समय तो देखिए वहाँ सोसाइटी में नहीं रहता है, उसके जो स्टाफ होता है वहाँ पे स्टाफ को बताइए मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यू है या और कोई प्रॉब्लम है। तो अगर स्टाफ फिर भी नहीं दूर करता तो आप लोकल जो आपकी बॉडी है डेवलपमेंट अथॉरिटी से, वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकल आप डीएम से कंप्लेंट कर सकते हैं कि बिल्डर ऐसे ऐसे हमसे सुविधाएं कमिट करी थी या हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो निश्चित तौर पे लोकल अथॉरिटी से अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाता है मोस्टली केसेस में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके। लेकिन एक जाते जाते एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे खरीदारों के लिए, आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या रहेगा?
1: देखिए, घर या दुकान खरीदते समय सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम जीवन का सबसे बड़ा निवेश कर रहे हैं अपने, है ना। एक हर आदमी का सपना होता है कि मैं व्यापार के लिए कोई अपनी शॉप खरीदूं या अपने रहने के लिए, अपने परिवार के लिए कोई प्यारा सा छोटा सा घर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है, एक तो आपको पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको कोई भी प्रपोजल बिल्डर की तरफ से आता है तो आप उस सारे उसके डॉक्यूमेंट्स को, जो भी ब्राउचर है, जो भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, जो भी उसने अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया है, उसको डीपली आप उसको चेक करें और उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लोकल अथॉरिटी से भी, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां से भी आपको मिल सकती है कि ये प्रोजेक्ट उसका अप्रूव्ड है नहीं है, उसके बाद बिल्डर के पास लैंड बैंक इतना है नहीं है, या सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए मैलाफाइड इंटेंशन से मार्केट से पैसा उठाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, हर भुगतान का अगर आप उसे चेक से पेमेंट दे रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड रखना है, बैंक का स्टेटमेंट किस डेट में आपका चेक पास हो रहा है, अगर आप डीडी से पेमेंट कर रहे हैं तो डीडी की फोटो स्टेट रखिए, अगर आप आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करा रहे हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और अपने सबसे बड़ी बात अपने कानूनों जो आपको प्राप्त है उसके प्रति सजग रहें, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तभी आप जो है इन सारी जितनी भी ये जो चीजें हैं, जितने भी ये आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, तभी आप इनसे बच पाएंगे। तो सजग रहना है सबसे बड़ी चीज में, और जो है बिल्डर्स की तरफ से अगर फोन पे कोई, उसकी टीम की तरफ से कोई आपके पास प्रपोजल आता है और यदि आपका विचार बनता है निवेश का, तो पहले प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लीजिए, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में जाके जानकारी लीजिए कि वास्तव में प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं है, या ऐसी कोई आपको जो है मैलाफाइड इंटेंशन आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए।
0: बिल्कुल, और बिना जानकारी के आपको ये कह दे कि भैया पहले पैसे ट्रांसफर करो, तो इस पर यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज की इस बातचीत में हमें यही सीख मिली कि घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी फैसला भी है। सही जानकारी, सही दस्तावेज और अपने अधिकारों की समझ आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रीना,
0: जिन्होंने इतनी आसान भाषा में रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों से जुड़े कानूनी कारों की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझी। उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपके कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे और अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो अब आप अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो श्रोताओं याद रखिए, सपनों का घर तभी सुकून देता है जब उसके साथ आपके अधिकार भी सुरक्षित हो। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जी। बाय बाय।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करगिल विजय दिवस के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। दिल्ली नगर निगम को शहरी नागरिक सेवाओं और जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई मंत्रियों ने दिल्ली की अनहत सिंह को विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर बधाई दी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगी। इसके सिफारिशों के आधार पर भविष्य की परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा व्यवस्था भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीक आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए सरकार कल संसद में कड़े प्रावधानों वाला नया विधेयक भी पेश करेगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता रहेगा।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के

0: संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साह वर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
0: कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देशभर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी को आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रकृति के प्रति अपने दायित्व निभाने का आह्वान किया। साथ ही मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा दी। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सुना। मीडिया से बात करते हुए श्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया।
2: आज मन की बात का 136वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री जी इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं, देश की सरकार ने क्या किया इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। उनका मानना है कि देश जो प्रोग्रेस कर रहा है वो देश के 140 करोड़ जन की सहभागिता से देश का विकास, देश की तरक्की हो रही है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया है। साथ ही आयोग के सदस्य के रूप में कुलदीप सिंह मोहम्मद हारून को नियुक्त किया है। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर लता गुप्ता और श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला को सदस्य नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद दिल्ली महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष लता गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य आयोग में लंबित शिकायतों का तेजी से निपटारा करने और तय समय सीमा के भीतर मुद्दों को सुलझाना है।
3: आयोग के पास कई प्रकार की शिकायतें भी पहुंचती ही थी, तो उन लंबित शिकायतों को जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण हो और समयबद्ध तरीके से उन समस्याओं को खत्म कर पाए। हमारी दिल्ली की हर एक बहन को आयोग पर एक विश्वास बने, ऐसे कार्य करते हुए हम काम करेंगे।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य निष्पक्षता, संवेदनशीलता तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि करगिल के वीर जवानों का शौर्य, समर्पण और राष्ट्रभक्ति हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता के साथ देश के जाबाज सैनिकों ने दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन समाप्त होने के बाद से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने विशेष स्वच्छता मरम्मत और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने पूरी रात मौके पर मौजूद रहकर सफाई और पुनर्स्थापन कार्यों की निगरानी की। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने कहा कि इस अभियान में सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों, हरित पट्टियों, दीवारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई, धुलाई, मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य किया गया।
4: जंतर मंतर आपको पहले से ज्यादा साफ दिख रहा होगा। जैसे ही कल प्रदर्शन समाप्त हुआ तो रात से ही हमारी पूरी एनडीएमसी की टीम, जिसमें मैं स्वयं, हमने पूरा जंतर मंतर का कूड़ा, जितना गार्बेज था, बाकी सब थी, धुलाई थी, इसकी वॉल पेंटिंग थी, इसके कहीं पर होर्डिंग्स और बैनर्स थे, उन सबको बड़े क्लीन से हमने साफ किया।
1: दिल्ली नगर निगम एमसीडी को भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट और स्कीम एक्सपो 2026 में शहरी नागरिक सेवाओं तथा जनकल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान नागरिक केंद्रित सेवाओं, जल कल्याणकारी पहलों तथा शहरी प्रशासन में नवाचार के क्षेत्र में एमसीडी के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया। दिल्ली नगर निगम ने अपने समर्पित स्टॉल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पहलों और जन सेवा संबंधी नवाचारों का प्रदर्शन किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट 12 से 15 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन करेगी। साथ ही हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर के बाजारों में बड़े स्तर पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन करेगी।
5: इसकी घोषणा आज नई दिल्ली में आयोजित कैट की राष्ट्रीय व्यापारी बैठक में ली गई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 200 से अधिक वरिष्ठ व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 भी देश की आजादी के भव्य उत्सव की भावना को समर्पित होगा। साथ ही भारत मंडपम परिसर को तिरंगे की सजावट से अलंकृत किया जाएगा, जिससे देशभक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संदेश देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा आगंतुकों तक पहुंचे। इस अवसर पर चांदनी चौक से सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति प्रत्येक व्यापारी की श्रद्धा, सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने देश के सभी व्यापारिक संगठनों, बाजार संघों और व्यापारियों से इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा मार्क वाली 1600 क्वार्टर बोतलें बरामद कर एक चार पहिया वाहन जब्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर दिल्ली के अनहत सिंह को बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी अनाहत सिंह को बधाई दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी ये जीत देश की हर बेटी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का विश्वास देगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करगिल विजय देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। दिल्ली नगर निगम को शहरी नागरिक सेवाओं और जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: पापा लाइए 3000।
7: क्यों भाई?

0: यू आर माय स्पेशल फ्रेंड।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और इस वक्त आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज दिल से दिल का जो कनेक्शन है वो मेरे अकेले आरजे आनंद का नहीं, मेरे साथ दो और कमाल के लोग हमारे स्टूडियो में उपस्थित है, मौजूद है, उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे आज हम। और वो आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आए हैं ये मैं नहीं, वो ही बताएंगे, जिसमें से एक को आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे अब तक, क्योंकि जब रेडियो पे कोई एक बार अगर सुनाई देता है तो फिर उसकी पकड़ और पहचान दोनों ही हो जाती है। यही तो खास बात है फिर मुरादाबाद में, जो आते हैं फिर वो फेमस हो जाते हैं। चलो जी, ये तो हुई हमारी थोड़ी सी फालतू बात, अब करते हैं काम की बात। आज हमारे स्टूडियो में दो लोग बहुत ही कमाल के हैं जैसे मैंने बताया, और दोनों के नाम डेफिनेटली मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम उन्हीं से उनका तारूफ जो है आपसे सीधा करा दे तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, क्योंकि ये आज की जो बेहतरीन महफिल है ना, ये आपको बहुत कुछ आनंदित करने वाली है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानने को सुनने को मिलेगा, तो आप स्टे ट्यून रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे प्यारे से, जो अब हमारे श्रोता हैं और हमारे प्यारे गेस्ट भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका एफएम मुरादाबाद में, एक बार अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी सर, पहले मैं चाहूंगा आप सर आपसे जो है थोड़ा परिचय हो।
6: ये तो लखनऊ की संस्कृति थी कि पहले आप, ये मुरादाबाद में भी लागू हो गई है। जी
5: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए दूसरी आवाज आपने पहली आवाज से पहली सुन ली, लेकिन उनको मुखातिब आपसे थोड़ी देर के बाद ही कराएंगे, क्योंकि थोड़े स्पेशल लोगों को वेट कराना चाहिए। जी सर आप थोड़ा सा बताएं।
7: जी जी बिल्कुल आनंद जी, मैं हाजिर हूँ, श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
5: जी जी बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार।
7: सब भी मुझे जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप सबका प्यार मुझे मिलता रहता है। मैं हूँ मनोज बनू मुरादाबाद से, और दिल से शायर भी, कवि भी, हिंदी में भी और उर्दू में भी कहने की कोशिश रखता हूँ। और मेरे साथ जो साथी आज एक अजीम हस्ती है, जो मुरादाबाद से ही ताल्लुक रखती है, शहर जिगर से ही ताल्लुक रखती है, ये हैं शुभम कश्यप जी। शुभम कश्यप जी आपको अपने बारे में खुद बताएंगे। शुभम कश्यप जी कुछ अपने बारे में हमारे श्रोताओं को।
6: एफएम मुरादाबाद 89.6 के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मैं शुभम कश्यप, शुभम मुरादाबादी, और बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे आप सबसे मुखातिब होने का ये मौका मिला है। उसके लिए मैं एफएम मुरादाबाद की सभी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर पे मैं मनु जी का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस लायक समझा कि एफएम मुरादाबाद के सभी श्रोताओं से मैं रूबरू हो सकूं।
7: नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे बीच में हैं, हमारे श्रोताओं के लिए आज एक नया नाम है, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपकी जो छाप रहेगी वो काफी लंबे समय तक हमारे श्रोतागण याद रखेंगे।
5: बहुत ही बढ़िया, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शुभम जी, जो अभी आपने जैसे कि दो लाइनें बोली और सर को आपने इंट्रोड्यूस भी किया प्रोग्राम में, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन एक मजे की बात ये कि आपको ये लेकर आए, फिर आपने इन्हीं को क्रेडिट दिया, ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये होना भी यही चाहिए कि अगर आप किसी के साथ आ रहे हैं तो उसका वो मत भूलिए, थैंक्स तो करना बनता है। सर आपको भी धन्यवाद, मनु जी आपको भी
7: थैंक्स टू यू। मैं बिल्कुल धन्यवाद अदा करता हूँ। और अभी भाई कह रहे थे कि ये लखनऊ की रवायत है कि पहले आप, तो क्यों ना हो, हमारे यहाँ की जो राजधानी है एक्चुअल वो
5: लखनऊ की राजधानी है,
7: हमारे योगी बाबा लखनऊ में विराजते हैं,
5: बिल्कुल
7: तो लखनऊ है तो हम
5: हैं। ऐसी बातचीत तो बिल्कुल आपने सही कहा मनु जी, बहुत अच्छा बोला आपने, लखनऊ तो लखनऊ है, और लखनऊ वालों की बात ही अलग है। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में तो नहीं मुरादाबाद में हैं। फिलहाल एक बढ़िया सा गीत लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद जल्दी से लौट कर आएंगे, तो फिर ये जो महफिल है इसको और अच्छे से सजाएंगे। शुभम जी हमारे साथ हैं, मनु जी हमारे साथ, तो आप कहीं मत जाइए, मेरा भी साथ आपके साथ ऐसे ही बरकरार।

0: एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने प्रोग्राम में सुना, और आज का ये जो प्रोग्राम है बेहद खास है क्योंकि इस प्रोग्राम को बहुत ही उम्दा खूबसूरत बना रहे हैं। हमारे साथ मनु जी हैं और साथ में शुभम भैया हैं, और शुभम जी से तो खैर हम पहली बार मुखातिब हो रहे हैं और वो स्टूडियो में भी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो भैया आपको अच्छा लग रहा है हमारे ऑफिस में?
1: बहुत अच्छा लगा, खासकर वर्क कल्चर का बहुत अच्छा है, और संडे की छुट्टी आपने अपनी कुर्बान में रूपा करी, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा है जब अपने जैसे कलाकार लोग मिलते हैं तो उनके लिए दिल से सलाम निकलता है क्योंकि एक कलाकार कोई कलाकारी पहचान।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल सही बात है ना सर जी, बिल्कुल सही।
0: तो बस वही चीज है, और जब जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना वो ऑडियंस का प्यार चाहते हैं, और जब प्यार मिलता है तो कलाकार की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। क्यों?
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
0: चलिए तो पहले ये बताइए, पहले भैया आपसे शुरुआत करें। देखिए मनु जी से तो हमने बहुत कुछ सुना है और आज भी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेशल तो वो सुनाएंगी जब आए हैं, तो अपना चिट्ठा लेकर आते हैं वो पूरा। लेकिन हम सोच रहे हैं आप आए हैं तो हमारे लिसनर्स के लिए कुछ नया और बेहतर हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैं करता हूँ, और क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत तो थोड़ा सा खुशनुमा बनाए।
0: हाँ बिल्कुल, खुशनुमा ही होनी चाहिए भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल
1: करते हैं कि मतलब अर्ज करता हूँ कि ये किसने कह दिया होती है खुदकुशी अच्छी।
2: वाह।
1: ये किसने कह दिया होती है खुदकुशी अच्छी, हर एक बात ही देखी गई खरी अच्छी।
2: वाह वाह।
1: ये किसने कह दिया होती है खुदकुशी अच्छी, हर एक बात ही देखी गई खरी अच्छी, और ये शेर और साथ में नसीहत के घरों को करते हैं बर्बाद तो शुभम दोनों। घरों को करते हैं बर्बाद तो शुभम दोनों, गलत न मिस्त्री अच्छा न स्त्री अच्छी। गलत न मिस्त्री अच्छा न स्त्री अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा कि मनु जी भी कुछ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने भी बहुत ही उम्दा बात कह दी बातों बातों में। मुझे लगता है कि कुछ कुछ शायरी मनु जी ऐसी होती है जो एकदम सच्चाई से हमें रूबरू कराती
2: है। जी बिल्कुल सही
0: है ना। और अब मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ बेहतरीन पेश करें।
2: देखिए आज का दिन तो शुभम जी के नाम है।
0: बिल्कुल, लेकिन बीच में आप भी साथ देंगे तो ये महफिल में और चार चांद लग जाएंगे।
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा।
0: जी, जी।
2: मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले प्रोग्राम में एक नज्म के ऊपर बात हमारी,
0: हाँ हाँ, और वहीं से हमारे जो बातों का सिलसिला था वो खत्म हुआ।
2: जी जी जी जी। तो मैं आनंद जी ये चाहता हूँ कि

0: एक नज्म अपने दर्शकों के अपने श्रोताओं के बीच में रखूं।
1: बिल्कुल स्वागत है।
0: और जाहिर सी बात है श्रृंगार में वियोग और संयोग दोनों ही होते हैं।
1: करेक्ट।
0: और जितने जुड़े हुए दिल खास होते हैं टूटे हुए दिल उससे भी ज्यादा खास होते हैं। तो नज्म मैं हाजिर करता हूँ अपने श्रोताओं की पेश नजर है। इसका उन्वान है कभी तुमसे वफा की जुस्तजू। देखें किस तरह अपना सफर तय करती है नज्म। कभी तुमसे वफा की जुस्तजू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
1: वाह।
0: कभी तुमसे वफा की जुस्तजू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। तेरी हर एक अदा लगती थी प्यारी कभी तुझ में खुदासा दिखता था। तेरी हर एक अदा लगती थी प्यारी कभी तुझ में खुदासा दिखता था। तेरे एहसास की शिद्दत बला थी मैं खुद से भी जुदा सा दिखता था। कभी मरकज वफा की तू ही तू थी कभी मरकज वफा की तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
1: क्या कहने।
0: देखें किस तरह रवानी है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप भी जिसके साथ ये कैफिया बीती हो वो इससे रिलेट करें।
1: बिल्कुल।
0: कभी पहरों निकल जाते थे यूं ही झलक पाने तेरी राहों में पल भर।
1: क्या कहने।
0: नजर मिल जाए तो वो कैफियत थी हलक में सांस थम जाती थी अक्सर।
1: क्या
0: कहने। कभी पहरों निकल जाते थे यूं ही झलक पाने तेरी राहों में पल भर। नजर मिल जाए तो वो कैफियत थी हलक में सांस रुक जाती थी अक्सर। महज मंजिल सुकून की तू ही तू थी महज मंजिल सुकून की तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मुझे कोई खजाना मिल गया हो कि जिन लम्हात में पाया था तुझको।
1: क्या कहने।
0: कहां चाहा उन्हीं गहराइयों से कि जैसे कर चाहा था तुझको।
1: क्या कहने।
0: मुझे कोई खजाना मिल गया हो कि जिन लम्हात में पाया था तुझको। कहां चाहा उन्हीं गहराइयों से कि जैसे टूट कर चाहा था तुझको। मेरा हासिल खुशी बस तू ही तू थी मेरा हासिल खुशी बस तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
1: क्या बात। क्या कहने। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। बिल्कुल। क्या बात है सर। आपने जो लास्ट में बोला ना मजा आ गया इसको सुनकर।
0: शुक्रिया।
1: नब्ज यही जो होती है जो नज्म होती है सर उनकी बात ही अलग होती है सर। मतलब वो अंदर तक हमें चीजों से रूबरू करा देती हैं। बहुत ही बेहतरीन। शुभम भैया आप क्या अर्ज करना चाहेंगे इसी बात पे।
2: पहले तो मैं मनोज जी को बधाई देना चाहूंगा। बहुत शानदार आपकी नज्म रही और जो टूटे हुए दिल की गूंज थी वो यहाँ तक आ रही थी।
0: शुक्रिया शुक्रिया दोस्त।
1: जब तक शुभम भाई तैयारी कर रहे हैं तब तक हमें गाना सुन लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद वी कम बैक। डोंट गो एनीवेयर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आज की जो महफिल है बहुत ही खूबसूरत है, इसमें तीन पत्ती का जो साथ है वो एक साथ मिल रहा है। शुभम जी यहाँ पर है, मनु जी है और मैं भी हूँ। देखिए मैं सिर्फ सुनने के लिए बैठा हूँ, एज ए ऑडियंस मुझे बहुत मजा आ रहा है, आई एम श्योर आपको भी आ रहा होगा। तो शुभम भैया कुछ सुनाने की तैयारी में थे, तो अब जरा चलते हैं सीधा उनके पास। जी सर
1: जी, मैं सुनाने को तो बहुत कुछ था,
0: पहले ये बताओ आपको मजा आ रहा है या नहीं? सॉरी मैं बीच में।
1: बिल्कुल आनंद जी, आपकी महफिल में रह के बिल्कुल आनंद आ रहा है।
0: क्या बात।
1: और मैं जब से मनु जी की अभी नज़्म सुनी है तो मैं उसी में खो गया था और मैं सोच में पड़ गया था कि क्या पढूं। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि जब मनु जी ने इतना अच्छा आगाज कर दिया है कि उसके बाद क्या करेंगे, और जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। आप सभी श्रोताओं को ये मजा आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट।
1: तो मैं अर्ज करता हूँ कि आशना हो गया अजाब से भी।
0: वाह,
1: आशना हो गया अजाब से भी।
0: जी जी,
1: दोस्त अनजान था जवाब से भी।
0: क्या बात है।
1: आशना हो गया अजाब से भी, दोस्त अनजान था जवाब से भी। और शेर है कि मेरी कोशिश का वो नतीजा था, मेरी कोशिश का वो नतीजा था, चांद निकला था जो नकाब से भी, चांद निकला था जो नकाब से भी। और शेर है कि जो एक आशिक होता है उसका

0: में तरन्नुम था।
1: वाह वाह वाह।
0: उसकी आवाज में तरन्नुम था, नर्म लहजा था वो गुलाब से भी, नर्म लहजा था वो गुलाब से भी। और शेर देखे के जब उसका दिल टूट जाता है फिर क्या करता है कि पहले आशिक का हम शक्ल वो समझ।
1: वाह बात है।
0: पहले आशिक का हम शक्ल वो समझ, अब बुलाती है जी जनाब से भी, अब बुलाती है जी जनाब से भी। और एक दौर वो आता है जब आशिक बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसमें उसके लिए कहता है कि जिस दिन मिली थी आंखें ये, उनसे जिस दिन मिली थी आंखें ये, दिन में दिन था वही खराब से भी, दिन में दिन था वो खराब से वही खराब से भी। और शेर है, जिंदगी का निजाम है जारी, जिंदगी का निजाम है जारी, है हवा धूप से तो आप से भी, है हवा धूप से तो आप से भी। और शेर है कि जब शादियां होती है उसके लिए शेर है कि शादियों के निकलते मुहूर्त हैं, शादियों के निकलते मुहूर्त हैं, ज्योतिषों के लगे हिसाब से भी, ज्योतिषों के लगे हिसाब से भी। और शेर है के मकता है कि आस्तीनों में सांप देखे हैं,
1: क्या बात है,
0: आस्तीनों में सांप बैठे हैं, अपने अपने शुभम हिसाब से भी, अपने अपने शुभम हिसाब से भी। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत अच्छी,
2: बहुत ही आनंद आया मुझे। और ये जो अपने नाम के साथ आप चीजों को ऐड कर रहे हैं ना, गजब, लाजवाब
1: जी। आनंद जी, इसे तखल्लुस कहा जाता है।
2: और क्या कहा जाता है?
1: तखल्लुस कहा जाता है।
2: इसका मतलब क्या होता है?
1: ये उपनाम
0: होता है, कायदे में इसको पेन नेम कहा जाता है। जैसे धनपत सहाय मुंशी प्रेमचंद हो जाते हैं।
1: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। और ये जो इन्होंने अपनी गजल
2: में के कलाकार पकड़ के लाए हो आप, मतलब
1: अरे ये मेरे
2: कहां छुपा के रखा था,
1: जानता था
2: अल्टीमेट हीरा,
1: बाकी ये गदर कर देंगे।
2: हाँ हाँ, नहीं नहीं, नो डाउट।
1: आनंद जी, मैं
2: एक तो इनका तलफ्फुज़ इतना बढ़िया है, इनकी आवाज इतनी लाउड है, तो इनके हिसाब से बड़ी मस्त लग रही है वो, जो भी कर रहे हैं शेर व शायरी, सब कुछ बेहतर है।
0: शुक्रिया, बस आपकी जरा नवाजी।
1: तो आनंद जी, गजल के अरूज में एक बात ये आती है कि जहाँ से गजल शुरू होती है,
2: हाँ जी हाँ जी,
1: उस पहले शेर को मतला कहते हैं।
2: वाह।
1: और जिसमें अपना ये उपनाम शामिल, पेन नाम शामिल किया जाता है आखिरी शेर में, उसे मख्ता बोलते हैं गजल की दुनिया में।
2: क्या बात है।
1: तो बस हालांकि सब जानते हैं लेकिन फिर भी कह देना,
0: अपने श्रोताओं का थोड़े से नॉलेज में इजाफा करना इसको कह सकते हैं हम।
1: हाँ,
0: और साथ ही साथ अगर मनु जी के साथ में रहने का यही फायदा है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसी बात में।
1: चार मिसरे रखता हूँ,
0: सुनाइए। अर्ज।
1: किसे हक है तेरी मर्जी में कोई भी दखल दे दे, किसे हक है तेरी मर्जी में कोई भी दखल दे दे, जो तू चाहे करिश्मे को हकीकत का अमल दे दे, और भला तुझसा करम फरमा सिवा तेरे कहाँ होगा, भला तुझसा करम फरमा सिवा तेरे कहाँ होगा, कि जन्नत की रिहाइश एक नेकी का बदल दे दे, कि जन्नत की रिहाइश एक नेकी का बदल दे दे। और चार मिसरे ये कि खुदा भी, गॉड भी, भगवान भी, वाहे गुरु भी तू।
0: क्या कहने,
1: खुदा भी, गॉड भी, भगवान भी, वाहे गुरु भी तू, हमारी कोशिशों के हौसले का दम शुरू भी तू।
0: क्या कह रहे।
1: दरअसल शुभम जी, मैं बताता चलूं कि ये जो पहला मिसरा है ये जनाब साहिल सहरी नैनीतालवी साहब ने हमें दिया था, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ कहो आप, क्योंकि हम उस समय वक्त बहुत छोटे हुआ करते थे, नया नया पदार्पण हुआ था गजलियात की दुनिया में। और ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है, उस्ताद शायरों की फहरिस्त में आते हैं वो, ज्ञानी जेल सिंह साहब के साथ में उन्होंने नेशनल लेवल के मुशायरे पढ़े हैं।
2: क्या बात,
0: बहुत अच्छी बात।
1: तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका एक वकार कितना बड़ा रहा। तो उन्होंने जो ये मिसरा दिया था तो उस पर ये चार मिसरे हुए हैं।
2: जी, बहुत और अच्छे हुए हैं।
1: ये जो भी इसमें खास हुआ है वो मैं उनके उस मिसरे को देता हूँ, क्योंकि जब खास चीज होती है तो वो अपना एक खास मुकाम भी रखती है, और नहायत ही एक खूबसूरत चीज निकल कर आती है कि खुदा भी, गॉड भी, भगवान भी, वाहे गुरु भी तू,
2: क्या बात है,
1: हमारी कोशिशों के हौसले का दम शुरू भी तू,
2: वेरी नाइस,
1: तो तेरी मर्जी से होता है यहाँ जर्रा भी सूरज सा, बसा है मुझ में तू ही और मेरे रूबरू भी तू,
2: क्या कहने,
1: और मेरे रूबरू भी तू, खुदा भी, गॉड भी, भगवान भी, वाहे गुरु भी तू।
2: बहुत सुंदर। कसम से सर आपने तो चार चांद लगा दिए ये बात बोल के, मतलब कुछ मैंने पहले भी

0: क्या चल रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब शेरो शायरी नज्म गजल जो भी चीजें बनी है वो सब कुछ हमें एकदम ना रियलिटी से कनेक्ट करती हैं। जैसे हम आज के यूथ हैं तो हमें बहुत सी चीजें नहीं पता है, बट अभी जब आपकी ये चीजें सुन रहे हैं तो बड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ ये चीज ये है और ये चीज ये मैसेज दे रही है।
1: आनंद जी, अगर ये बात जो आपने कहा है अगर हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है,
0: बिल्कुल
1: हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। दरअसल क्या है कि आजकल का जो बहुत फास्ट टाइम चल रहा है, छोटी छोटी चीजों को लोग तरजीह देते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो ये होता है कि गजल जो है उसका अपना मकाम है।
0: करेक्ट।
1: और ये बात एक महसूस करने की है कि इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो छूट सकती हो। आप इसमें इमोशंस को देख सकते हैं, आप इसमें रिश्तों को देख सकते हैं, आप इसमें खुशी को देख सकते हैं, आप इसमें गम को देख सकते हैं, आप इसमें इवन के हर चीज को देख सकते हैं, आप इसमें हर रिश्तों को जी सकते हैं। माँ को जिया, मुनव्वर साहब को देखिए कि वो माँ के नाम से इतने फेमस हुए कि आज तक लोग जो ने माँ के दाम से जोड़कर उस शायरी के लिए जोड़कर देखते हैं। तो यही बात है, ये चीज अगर श्रोताओं तक हमारे पहुंच रही है तो ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है अपने कार्यक्रम की।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंच रही है और मुझे उम्मीद है कि जितने हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, जो भी हमें यंग लोग सुन रहे हैं, उनको भी ये प्रोग्राम डेफिनेटली पसंद आ रहा होगा। और ये जो छोटी छोटी चीजें आप और मैं और शुभम जी मिलकर कर रहे हैं, यही चीजें जो हमारे प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन बना रही है। बाकी शुभम और सर के पास वापस लौट कर आएंगे, हम कुछ और नई चार चीजें उनसे सुनेंगे बेहतरीन, और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा नो डाउट। आप बनी रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद जल्दी मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर, जहां आनंद के साथ आज की जो महफिल है वो बहुत ही एकदम धाकड़ वाली हो गई है भाई, क्योंकि यहां पर हमारा साथ दे रहे हैं शुभम जी, मनु जी, और लगातार कुछ ना कुछ नई नई बातें कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो जो शेरो शायरी का माहौल बना हुआ है महफिल में बहुत ही बढ़िया, लेकिन बीच बीच में मजे की बात है कि कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग नए नए शब्द, नई नई जानकारियां, और जो ये बता रहे हैं, जो ये सुना रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम चाहेंगे आप ऐसे ही हफ्ते भर में एक दो बार चक्कर लगाएं और कुछ नया सिखा कर जाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: आप बुलाते रहेंगे तो हम आते, आप बुलाते रहेंगे हम आते रहेंगे।
0: अरे शुभम जी, आपका तो बुलाते रहेंगे, वाई नॉट। और मनु जी तो खैर हमारे साथ जुड़े हैं ही, तो अब जो है पहले कौन शुरुआत करेगा और क्या अभी हमारा लास्ट है, तो अब जाने से पहले कुछ अच्छा हमारे श्रोताओं के लिए जो आप चाहें।
3: फिर वही लखनऊ की, पहले आप आ गया,
2: उम्र हजार में ज्यादा फर्क नहीं है।
0: देखिए मुझे लगता है कि भाषा कोई भी उसमें तहजीब होनी चाहिए।
3: मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो हमारी बातचीत चल रही है इसे बोलते हैं अदब।
0: अदब
3: और अदब के मामले में जो लखनऊ है वो एक स्कूल है,
0: स्कूल है,
3: रामपुर एक स्कूल है।
0: एग्जैक्टली,
3: तो जाहिर सी बात है कि जो जहाँ की बात चलेगी वहाँ का जिक्र हमेशा होता ही,
0: बिल्कुल, और वो हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाता है, जिसे कह सकते हैं वो हम मतलब बैठे मुरादाबाद में होते हैं लेकिन पहुंच लखनऊ में जाते हैं। मजे की बात है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल
3: छोटा सा याद आ रहा है भाई,
0: अर्ज
3: के दिल में ही रहती है तस्वीरें यार, दिल में ही
2: रहती है तस्वीरें
3: यार, जब जरा नजरें झुकाई देख ली।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही
3: शेर कहे गए हमारे उस्तादों द्वारा।
2: और इसी शेर से एक याद आता है कि मुझे शेपर रसूल साहब का, कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया।
3: क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: गजब, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा शुभम जी आप आए, मनु जी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत ही आनंद आया, आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत आनंद आया होगा। तो अब जाने का समय हो रहा है, हमारे तमाम सारे श्रोता हैं जो चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम और ज्यादा चले, लेकिन अभी इस प्रोग्राम को हम जो है यहीं पर समाप्त इसलिए करेंगे क्योंकि अगर जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे।
2: बिल्कुल,
0: क्यों शुभम जी,
2: बिल्कुल
0: दोबारा भी तो बुलाना है यार, सारा पिटारा आज ही थोड़ी खुलवा लेंगे भाई,
2: सही बात।
0: तो शुभम जी फिलहाल मैं लेकिन चाहूंगा कि जाने से पहले आप कुछ चार शब्द हमारे लिसनर्स के लिए कहकर जाएं, कुछ बेहतरीन सा सुनाकर जाएं, जो आपके लिए भी बेहतर हो और हमारे श्रोताओं के लिए भी।
2: मैं
0: और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा हमारे लिसनर्स।
2: बिल्कुल बिल्कुल, एफएम मुरादाबाद 89.6 में आके मुझे बेहद खुशी हुई, और आनंद जी से खास तौर पर मिलके जिस सादगी से आपने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, और साथ ही में कई बार क्या होता है जो एंकर होता है वो बहुत ज्यादा मतलब बोल जाते हैं, इसमें क्रिटिसाइज इसलिए ऑडियंस उनको करती है कि जो हमारे जो मेन गेस्ट है उनको सुनने को नहीं मिल पाता, बट मैं इस चीज में आपकी तारीफ करूंगा कि आपने गेस्ट को टाइम दिया एक तो उसके लिए, और बहुत ही आपका बोलने का बहुत शानदार लहजा है, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद
0: मेरी तरफ से। और आप जैसे लोग आते हैं तो सीख जाते हैं यार, थोड़ा थोड़ा कुछ इनसे सीखा कुछ।
3: ये तो शुभम जी समझने की बात है कि हम जिनके साथ रूबरू हैं, जो हमारे आरजे हैं आनंद, उनका नाम ही आनंद है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो साथ में आनंद आ गया देखकर, इनसे मिलकर, इनके प्रोग्रामों के साथ अगर आनंद ना आए तो क्या बात है,
0: क्या बात है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो जाते जाते मैं एक देशभक्ति के कलाम से इजाजत लूंगा सभी श्रोताओं से, कि
3: बहुत अच्छी बात है
2: क्योंकि देशभक्ति का माहौल भी मैं समझता हूँ होना चाहिए, देश प्रेम होना बहुत जरूरी है आज के समय में।
3: जी नहीं, बिल्कुल सही बात।
2: तो मतलब अर्ज करता हूँ कि एक तरफ गीता सजी है, एक तरफ कुरान है,
0: क्या बात है,
2: एक तरफ गीता सजी है एक तरफ कुरान है, ये मेरे हिंदुस्तान की दोस्तों पहचान है, एक तरफ गीता सजी है एक तरफ कुरान है, ये मेरे हिंदुस्तान की दोस्तों पहचान है। और हिंदुस्तानी आदमी कैसा है कि इवन महिलाएं भी, मतलब एक हिंदुस्तानी होने का क्या अर्थ है कि सर कटाता है मगर सर को झुकाता ही नहीं,
0: क्या बात है,
2: सर कटाता है मगर सर को झुकाता ही नहीं, काबिले तहसीन मेरे देश का इंसान है, काबिले तहसीन मेरे देश का इंसान है। काबिले तहसीन का अर्थ मैं बताता चलूं कि तारीफ लायक, काबिले तहसीन यानी तारीफ के काबिल। और शेर है कि चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई हो, ए वतन तेरे लिए हर एक ही कुर्बान है ए वतन तेरे लिए, हर एक ही कुर्बान है। और शेर है कि है हमारे खून की बेशक चमन में सुर्खियाँ,
3: वाह
2: है हमारे खून की बेशक चमन में सुर्खियाँ, देश की सेवा हमारी जिंदगी की शान है, देश की सेवा हमारी जिंदगी की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ गीता सजी है, एक तरफ कुरान है। इसी के साथ मैं इजाजत लूंगा एफएम रेडियो 89.6 के सभी श्रोताओं से, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और साथ ही आनंद जी, वेरी मच, जोरदार तालियां यार, आपने तो माहौल अलग ही कर दिया। मतलब मुझे तो लग रहा था मैं 26 जनवरी के दिन तो नहीं आ गया हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा आपने सुनाया। और जाते जाते ये बड़ा यू नो हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा और उनके लिए एक यादगार भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी आपने जो है बात कह दी।
3: नहीं, इसके साथ साथ एक चीज और बहुत अच्छी हुई है, जो इनका संदेश था
0: जी
3: वो कौमी एकता के लिए है, जो हिंदू है मुस्लिम है, कुछ
0: भी था
3: उसके साथ साथ मतलब अपने रिलीजियस को
0: मानते हुए
3: राष्ट्र सेवा सर्वोपरि का जो संदेश है ये भी बहुत अच्छा। और इन्होंने जो काबिले तहसीन जो तहसीन हैं उसके जरिए इनके जो उस्ताद हैं वो भी तहसीन साहब हैं, तो उनको भी जिक्र कर लिया है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तहसीन मुरादाबादी साहब मेरे उस्ताद हैं और मैं कहूं कि मुझे शायरी का काका हरा उन्होंने ही सिखाया है, क्योंकि इससे पहले मैं हादसे में लिखता था और कुछ भी लिखता था। मैं कहूंगा गालिब साहब का एक शेर है कि बक रहा हूँ जुनून जुनू में क्या क्या कुछ कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो समझ नहीं थी, उम्र कम थी, 10-11 साल में पिछले जो भी सीखूं ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। और
3: बेहतर है, बहुत अच्छी बात है।
2: और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझे मनु जी का लगातार सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। जब भी मैं कहीं अटकता हूँ तो मनु जी को ही याद करता हूँ कि भाई यहाँ अटकाऊं।
3: ये तो मोहब्बत है भाई आपकी,
2: तो
3: अदरवाइज तो हम सीखते हैं आपसे।
2: नहीं नहीं, तो ये है।
0: थैंक यू शुभम भाई, बहुत बढ़िया लगा और मैं आपको दोबारा जरूर इनवाइट करूंगा, आमंत्रित करूंगा और मेरे श्रोताओं को भी इंतजार रहेगा और मुझे भी इंतजार होगा। मनु जी आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है, मुझे पता है श्रोता बहुत आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम दोबारा के लिए भी चीजें बचा के रखना चाह रहे हैं। तो मनु जी आप जाते जाते कुछ पंक्तियां कुछ लाइनें कुछ अर्ज करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे तमाम मुरादाबाद की जनता को?
3: आनंद जी जैसे आपने कहा संदेश की बात है, एक शायर अपने कलाम से ही
2: बिल्कुल
3: कोई भी बात कह सकता है, तो वही कहने की कोशिश है। देखिए आपने सुना होगा कि ताली एक तरफ एक हाथ से नहीं बजती है।
2: करेक्ट, बिल्कुल।
3: तो आप इस चीज को नजर में रखें और 2-3 मिसरे देखें।
2: बिल्कुल
3: शुभम भाई आप भी देखें।
2: स्वागत है।
3: खूब तर तो है
2: आहा।
3: मगर ये फैसला दोनों पे है।
2: क्या कहने,
3: खूब तर तो है मगर ये फैसला दोनों पे है, किस तरह की चाहिए आवो हवा दोनों पे है। और तू है बीमारे तमन्ना और मैं बीमारे इश्क, आ बराबर बैठ दोनों की दवा दोनों पे है।
2: क्या कहने, बहुत।
3: आ बराबर बैठ दोनों की दवा दोनों पे है। और कौन किसके साथ कितना बावफा है दोस्तों, कौन किसके साथ कितना बावफा है दोस्तों, बावफाई बेवफाई मसला दोनों पे है।
2: क्या कहने, क्या कहने,
3: मसला दोनों पे है। और इस कदर भी टूटकर, इसे ताईद भी समझ सकते हैं, इस कदर भी टूटकर क्या चाहना इस राह में, इस कदर भी टूटकर क्या चाहना इस राह में, निस्बतें किसकी बदल कर हूं जुदा दोनों पे है।
2: क्या कहने,
3: खूब तर तो है मगर ये फैसला दोनों पे है, किस तरह की चाहिए आबो हवा दोनों पे है। और बस निभाने के लिए या खुशनुमा कर लीजिए, देखिए परिवारों पे भी ये चीजें अक्सर रही हैं, बस निभाने के लिए या खुशनुमा कर लीजिए आपसी रिश्तों का बेहतर सिलसिला दोनों पे है।
2: क्या कहने, क्या
3: आपसी रिश्तों का बेहतर सिलसिला दोनों पे है। और ये गजल का शेर गजल में जरूरी हो जाता है, तो देखें कि झुक गई दोनों तरफ दोनों निगाहें देखकर,
2: वाह,
3: झुक गई दोनों तरफ दोनों निगाहें देखकर, खानदानों की विरासत मरहबा दोनों पे है।
2: क्या कहने,
3: खानदानों की विरासत मरहबा दोनों पे है। खूब तर तो है मगर ये फैसला दोनों पे है, किस तरह की चाहिए आबो हवा दोनों पे। तो साथियों श्रोतागणों से मैं अपने कहना चाहता हूं कि केवल ये इंतजार ना करते रहें कि पहले आप पहले आप, ये एक अच्छी बात तो है लेकिन इसके पीछे एक चीज ये भी छुपी हुई है कि कई अच्छे मौकों पर पहले आप की वजह से हम लोग इन चीजों से दूर हो जाते हैं, तो हमें वो दूरी कम करनी है और हम ऐसे जहां हमारे रिश्ते बसते हों, जहां हमारे संबंध बसते हों, जहां हमारे लिए एक अच्छी बातें होती हों, उसमें पहल करने में कभी चूकना नहीं चाहिए। और फैसला दोनों पे होता है तो निश्चित रूप से सामने से भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ऐसा मेरा मानना है।
0: क्या बात है, विश्वास आपका मानना ही हमारा मानना है। आपने जो है मेरी बातों को एकदम यहीं पे प्रोग्राम को टी एंड कर दिया है। थैंक यू सो मच शुभम एंड मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं फिर मुरादाबाद और आरजे आनंद में। उम्मीद करता हूँ श्रोताओं आपको ये प्रोग्राम डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके जरूर बताना। फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, छोड़ के जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। जल्दी होगी आपसे मुलाकात और फिर से लेकर आएंगे शुभम जी को साथ में मनु जी को। तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, सुनते रहिए आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है गीत आपके नाम से और मैं हूँ आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, संडे की शाम है, खूबसूरत सा नज़ारा है बाहर का, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, चांद आसमान में दिखाई दे रहा है और प्यारे प्यारे गाने भी चल रहे हैं ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस शो में कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप टेंशन ना लो। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जल्दी से कॉल लगाइए, हमें बेसब्र से इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल का। तब तक आप सुनिएगा एक सोना सा गाना ओनली फॉर आप ही के लिए। तो चलाए एक शानदार सा गाना आप सभी के लिए और उसके बाद करेंगे आपसे गुफ्तगु। आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइए। गुड इवनिंग एवरीवन, मुझे पता है आप किचन में बिजी हैं, अभी खाना बना रही हैं, लेकिन ये गाना तो सुनते जाइए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ब्यूटीफुल ट्रैक सुना करण औजला की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में हुस्न तेरा तौबा तौबा। और दोस्तों, पूरा माहौल स्टिल और एनर्जेटिक बन गया है ना। दोस्तों कहते हैं ना कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती, असली हुस्न तो इंसान की मुस्कान, उनके चेहरे, व्यवहार और दिल की सादगी में छुपा होता है। तो चलिए बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो,
1: सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
1: मैम जिला रामपुर, ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद इशरत, आप स्वागत कर रहा हूँ। मैम कैसी हो आप?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आपकी दुआएं हैं इशरत जी। आप बताइएगा क्या कर रहे हैं इस वक्त आप, और कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: उससे पहले मैम हमारी दुआ आपके साथ में रहेंगी हमेशा, जब तक ये केंद्र रहेगा जब तक हमारी दुआ रहेंगी मैम। और हमारी तरफ मैम काफी गर्म मौसम हो रहा है आज, काफी मतलब खतरनाक मौसम है रामपुर में।
0: अच्छा, बारिश वगैरह नहीं हुई वहाँ पर?
1: नहीं मैम, बारिश नहीं हुई है, दो तीन दिन से काफी गर्म, मतलब कुछ ज्यादा गर्म है इस टाइम।
0: हमारे साइड तो बारिश हुई है, अभी भी बारिश हुई है, यू नो इवनिंग में भी बारिश हुई है मुरादाबाद में। तो
1: बारिश हो रही है मुरादाबाद में?
0: अभी तो नहीं हो रही है, बट 8 बजे शायद 6 बजे के राउंड हुई थी, 6:30 पर।
1: यहाँ पे तो परसों हुई थी।
0: अच्छा, ओके।
1: थोड़ी
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी साइड भी बारिश हो जाए। बताएगा आप क्या सुनेंगे आज की शाम?
1: मैम आज दो सॉन्ग है, पहली मूवी है आप लौट चले, गाने के बोल रहे हैं ये कैसी मुलाकात है, और दूसरा गाना है मूवी का नाम है छुपा रुस्तम, गाने के बोल रहे हैं ऐसा ना हो अरमान जाग जाए, सोए हुए तूफान जाग जाए। मैम वाला सॉन्ग आपको रेडियो वाला गाना।
0: ठीक है सर, हम फर्स्ट गाना चूज करते हैं, हमें वो ज्यादा अच्छा लगा है। ओके
1: जी मैम, कौन सा भी आपको पसंद आए वो प्ले कर देना।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और ये प्यारा सा गाना हम सुनते हैं। देखिए आपकी और हमारी मुलाकात तो अभी स्टार्ट हुई है ना, अभी बातें शादी करनी है भैया, जल्दी से कॉल कर लो आप हमें।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय, गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक एंजॉय किया तुम्हार सानू, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी आवाज। ये कैसी मुलाकात है, किस खुमार में हमें, हाँ इस तरह से कुछ लिरिक्स थे। बड़ा ही खूबसूरत गाना आपने सुना। दोस्तों, आपकी और हमारी मुलाकात हो सकती है, कैसे देखिए, बातचीत आप मुझसे कर सकते हैं, भले ही आप उस पार हैं हम इस पार हैं। और कहते हैं ना कि रिश्ते जो होते हैं ना, वो फर्क नहीं पड़ता है कि दूरियां कितनी हैं, डिपेंड करता है कि दिल में एक दूसरे के प्रति कितनी प्रेम, कितनी रिस्पेक्ट है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जब दिल से दिल का रिश्ता होता है ना, तो कितने भी दूर हो वो खींचे चले आते ही है ना। देखिए, हमारे लिसनर भी खींचे चली आई है, जैसे ही खुशी यहाँ पर आई है। तो कौन कहाँ से कनेक्ट हुई है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो,
1: हाय दी, गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ।
0: दरक्षा फातिमा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: हाँ जी, आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला मुरादाबाद से बात कर रही हूँ मैम।
0: ओके, बताइएगा, आपके परिवार में सब ठीक हैं?
1: हाँ जी मैम, सभी बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हो और आपके परिवार में सभी कैसे हैं?
0: ऑल गुड, सब ठीक है। हम भी ठीक हो जाते हैं जब आप सबसे बातचीत हो जाती है हमारी।
1: हाँ मैम, क्योंकि आप इतना प्यारा बोलती हो तो हम भी अच्छे हो जाते हैं।
0: हाँ देखिए, दिल से दिल का रिश्ता है, इधर खुशी मुस्कुरा रही तो उधर भी हमारी दोस्ती मुस्कुराती है, अच्छा लगता है हमें भी।
1: हाँ मैम, बहुत अच्छा लगता है।
0: तो बताइएगा, डिनर किया आपने अभी? नहीं।
1: हाँ मैम, डिनर तो हो गया है।
0: ओके, डिनर हो गया है, वेरी गुड। तो बताइएगा। हाँ जी, मैं भी अभी कंप्लीट करके आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी।
1: हाँ मैम, टाइम भी तो काफी हो गया है ना।
0: हाँ जी, तो मैंने कहा चलो मम्मा ने इतने प्यार से बनाया है तो जल्दी से फटाफट गर्मा गर्म खाकर चलते हैं।
1: अच्छा, मम्मा के हाथ का खाकर आयो आप?
0: हाँ जी, आज मम्मा के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाकर आए हैं, बहुत टेस्टी था। अपने हाथ से तो रोज बनाकर खाते हैं, तो हमें, हमने सोचा कि आज ये ऑफर मिला है तो जल्दी से क्यों ना इस खाने का मतलब लुफ्त उठाया जाए।
1: हाँ मैम, क्योंकि आज भी मेरी मम्मा ने सब्जी बनाई है ना, बहुत टेस्टी है।
0: अरे वाह, हाँ माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है यार, हम कितनी भी कोशिश कर ले वो स्वाद ही नहीं आ पाता।
1: हाँ मैम, बहुत मम्मा तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है।
0: और बताइएगा आप?
1: मैम आपका इंतजार कर रहे थे, 9 बज गए थे, सोचा कि खुशी मैम कब आएंगी।

0: भैया आपने हमको बुलाया और हम चले आए, ऐसे कैसे हो सकता है आप हमें याद करें और हम ना आए।
1: हाँ मैम बिल्कुल, आप हम पुकारेंगे आपको, आपको आना पड़ेगा।
0: बिल्कुल जी, तुमने पुकारा और हम चले आए। और कैसे थे आगे आगे लिरिक्स से जान हथेली पर ले आए। हाँ
1: हाँ जी।
0: बताइएगा आज की शाम आप क्या सुनेंगी, और कुछ लाइनें भी आप शायद रीड कर रही थी मैंने सुना था।
1: हाँ मैं शायरी बोलना चाहती हूँ। हाँ, अपने हाँ, दोस्त के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइएगा।
1: इरशाद
0: इरशाद इरशाद।
1: तेरी दोस्ती इतनी खास हो, तेरी दोस्ती इतनी खास हो कि जलने वाले भी कहें, कि जलने वाले भी कहें काश ऐसी दोस्ती मेरे पास भी हो।
0: वाह वाह वाह क्या बात है, दो लाइनें थी लेकिन बड़ी कमाल की थी यार।
1: हाँ जी मैम, मेरी दोस्त ना बहुत खुश हो गई होगी सुन के।
0: और ऐसा ही होना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है।
1: हाँ जी मैम, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही थी कि आप शायरी बोलोगी या कॉल करोगी, तो मैंने सब मना कर दिया था।
0: अच्छा,
1: अब मैंने कॉल भी कर ली, शायरी भी कर दी, तो बहुत खुश होगी मेरी दोस्त।
0: ओके, आपने उनको सरप्राइज दे दिया। हाँ
1: हाँ जी मैम, सरप्राइज।
0: चलिए बहुत अच्छा। अच्छा सरप्राइज था आपका और उनको पसंद भी आया होगा हमें तो उम्मीद है। फिलहाल बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे आज।
1: आज मैं सॉन्ग सुनूंगी क्योंकि इतना प्यार तुमको
0: करते हैं हम।
1: हाँ जी
0: क्या जानोगे डियर, हमारी प्यारी लिसनर। चलो
1: बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा गुनगुनाती है आप।
0: नहीं नहीं वो तो छोटी छोटी सी कोशिश करते हैं।
1: हाँ मैम, जब करते हैं ना कोशिश तो इंशाल्लाह पूरी होती है।
0: हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आई यू नो कहते भी है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: कभी हार नहीं होती।
0: हाँ बिना मेहनत किए जे जे कार नहीं होती
1: जी।
0: तो चलो सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: सकती हूं मैं?
0: हाँ कुछ बस एक
1: दो तीन।
0: दो तीन नहीं बाबा, एक ही ले सकते हो आप। अब देख लो आप, चॉइस आपकी है।
1: दो लेती हूँ बस।
0: चलो ठीक है।
1: मेरी दोस्त रुकैया फातिमा, अफरोज फातिमा और लाइवा।
0: आपने तीन नाम ले लिए, चीटिंग की है। हाँ
1: इतना तो चल ही जाता है।
0: हाँ कोई बात नहीं, हमारी श्रोताओं की खुशी में भी हमारी खुशी है। सुनते हैं ये प्यारा गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम, बाय बाय,
0: मिस यू टू। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, बहुत ही अमेजिंग गाना है। लौट कर आती हूँ मैं, आप कहीं मजाइए, मुझे कॉल लगाइएगा, मुझे इंतजार है आपकी कॉल का।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: मुझे पता है दोस्तों, आप मेरा इंतजार कर रहे थे। देखिए, आपने इतनी शिद्दत से हमें मिस किया ना, इतनी शिद्दत से आपने हमें याद किया, तो हम रुक नहीं पाए। हमने कहा चलो अभी चलते हैं फिर मुरादाबाद 89.6 पर और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। क्या उनका नाम है, उन्हीं से जानते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाय दी।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका, नाम बताइएगा अपना मोहतरमा जी।
1: दीदी, मैं अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: ओहो हो, अफरोज बताइए कैसे हाल चाल है आपके।
1: मेरे हाल चाल इस टाइम बहुत अच्छे
0: है अभी। अरे वाह,
1: बताओ तुम कैसे हो।
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं, रीजन बताइए मुस्कुराने का।
1: दीदी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब ये सब चालू हो चुका है ना, तो बस मैं सोचती हूँ हर हफ्ते हम कॉल करें और आपसे इसी तरह बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: तो आपकी ये विश पूरी होती है, ठीक है।
1: जी वो कहते हैं ना कि जहाँ पे बेटियाँ पैदा होती है ना, तो वहाँ पे तो खुशी होती है, दुगनी हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत भाग्यशाली होता है वो घर, वो आंगन जहाँ डॉटर जन्म लेती है, बेटी बेटियाँ जन्म लेती हैं।
1: ये रहमत भी वहीं पे बरसती है जहाँ पे बेटियों की चाहत होती है, ये फूल वहीं पे खिलता है दी।
0: हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इस बात को मानती हूँ। और आप बताइएगा, खाना वाना खा लिया आपने, तभी इतनी एनर्जी आ गई है आज आपके अंदर।
1: हाँ दी, मैंने खाना खा लिया है और बस काम से फ्री होकर मैं आपको सुन रही थी और आपको कॉल की।
0: अच्छा तो बताइए कैसा लग रहा है आज आपको कॉल कर कर।
1: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ।
0: हाँ वो तो लग रहा है, आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपकी बातों में वो खुशी झलक रही है।
1: जी जी।
0: अच्छा तो बताइएगा अफरोज, आप आज क्या सुनोगे।
1: दीदी आज मैं सॉन्ग सुनूंगी, मेरे घर आई कोई नन्ही परी।
0: ओके, और ये प्यारा सा गाना किनको डेडिकेट करना चाहते हैं आप।
1: दीदी ये जिनकी बेटी है मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूँ, और उस नन्ही परी के लिए मैं कुछ लाइनें लेकर आई हूँ।
0: इरशाद इरशाद फरमाइए।
1: दीदी अर्ज किया है, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप कदर समझती हैं बेटियां। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप कदर समझती हैं बेटियां। घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के घर का चिराग हैं तो खिलता हुआ गुलाब हैं बेटियां। लड़के घर का चिराग हैं तो खिलता हुआ गुलाब हैं बेटियां।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइनें आपने लिखी हैं
1: दीदी। और मैं दुआ करना चाहती हूँ अल्लाह पाक उस बच्ची को किसी की बुरी नजर ना लगे और वो हमेशा खुश रहे।
0: आपकी ब्लेसिंग्स ऊपर वाली जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये प्यारा सा गाना आप सुनना चाहते हो, मेरे घर आई एक प्यारी नन्ही परी। मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: दीदी और मैं कुछ नाम, दो तीन नाम ले सकती हूँ।
0: हाँ हाँ चलो ले लो आप, फिर मैं मना नहीं करूँगी।
1: दीदी क्योंकि खुशी का माहौल है तो दी दो तीन नाम तो बनते हैं ना। दी जैसे कि मेरी दोस्त बेस्ट फ्रेंड लाइबा काजमी, और साथ में मेरे दरक्षा, और खुशी दी, और नजमा दी।
0: ओके,
1: और स्पेशली मैं ये उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूँ जिनकी एक प्यारी सी नन्ही परी आई है।
0: ओके आप खुश।
1: बिल्कुल बहुत खुश हुई और थैंक यू मेरी कॉल रिसीव की और इतनी सारी बात हुई हमारी।
0: मोस्ट वेलकम डियर, ये तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है और आप सबका प्यार है।
1: दीदी हमें भी बहुत अच्छा लगता है दी।
0: ओके गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स डियर।
1: थैंक यू, बाय
0: बाय, गुड नाइट। तो चलिए एवरीवन अभी सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे भी बात। आप भी ट्राई करो, शायद आपका भी लग काम कर जाए।

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत से गाना अभी आपने सुना, मेरे घर आई एक नन्ही परी। और जब घर में बेटियां जन्म लेती हैं ना, तो घर आंगन खुशी से खिल उठता है। और अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो
1: हेलो मुरादाबाद।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी रिहान जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: मैम हाल चाल सब बढ़िया है, जब उसे मैम आपसे बात हो जाती है और अच्छे हो जाते हैं।
0: जी बताइएगा क्या सुनेंगे आप?
1: गाने का नाम है दिल पागल दीवाना है जब प्यार हो।
0: अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गाना, और इसी गाने के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको हम टुमारो मॉर्निंग 10 से 12, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और यूं ही मुस्कुराते रहिए, हमेशा अपनों के साथ रहिए और अपनी भी केयर कीजिए, अपनी फैमिली की भी केयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपना ख्याल रखना और फैमिली का भी ख्याल रखना, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो बाकी सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अभी खुशी को दीजिए जाने की अनुमति। गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

0: मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
1: ओए पुत्तर नचना, भैन की सगाई च भाईनू नचना ही पैंदा।
0: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
2: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
3: ए गल चंगी बोली।
4: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
0: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077